0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Shifa wahan se shuru hoti hai jahan kudrat muskurati hai. Schwabe Single Remedies. कुदरत के अनमोल खजानों और जर्मन महारत का शाहकार जिन्हें आप तक 75 सालों से पाकिस्तान में पहुंचा रहे हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो.
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं प्रोफेसर महमूद अल हसन बात कर रहा हूं. मैं एक्स प्रेसिडेंट पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी रह चुका हूं. ब्लड प्रेशर एक खामोश कातिल है, इसलिए इसकी बरवक्त तशखीस और दवा का बाकायदा इस्तेमाल आपको मुख्तलिफ पेचीदगियों जैसे फारेज हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर और आंख की बिनाई जाया होने से बचा सकता है. इसलिए आपको बाकायदा दवा का इस्तेमाल, वर्जिश, नमक और चिकनाई से मुकम्मल परहेज करना.
3: ये पैगाम पाकिस्तान कारिक सोसाइटी और एडको लेबोरेटरीज पाकिस्तान के तावन से नशर किया गया है.
4: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें. डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है. दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100.
5: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं और निशाना हम सब. रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है. वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है. जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है. आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है. तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए. कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए. हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा. फैसला आपके हाथ में है.
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
6: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.

0: It's 7:30 AM. This time check is brought to you by
1: Dettol Cool Soap. ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए.
2: Hello, guess what? Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition और वो भी upgraded features जैसे push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims और sunroof के साथ full premium feel. और price सिर्फ 64,49,000. Pre-booking is open now, so जल्दी करें और अभी अपनी nearest Hyundai dealership visit करें.

0: पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं प्रोफेसर महमूद अल हसन बात कर रहा हूँ। मैं एक्स प्रेसिडेंट पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी रह चुका हूँ। ब्लड प्रेशर एक खामोश कातिल है, इसलिए इसकी बरवक्त तशखीस और दवा का बाकायदा इस्तेमाल आपको मुख्तलिफ पेचीदगियों जैसे फालज, हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर और आंख की बिनाई जाया होने से बचा सकता है। इसलिए आपको बाकायदा दवा का इस्तेमाल, वर्जिश, नमक और चिकनाई से मुकम्मल परहेज करना।
2: ये पैगाम पाकिस्तान कारिक सोसाइटी और एडको लेबोरेटरीज पाकिस्तान के तावन से नशर किया गया है।
3: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
4: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
5: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
6: Like us on Facebook.com/FM247365.

0: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: सामने वालों का बकरा भी आ गया, बाबा चले ना मंडी।
2: अभी चलते हैं।
3: पैसे रख लिए?
2: किस लिए? अब तो मंडी में भी पेमेंट होती है बराहे रास्त।
4: इस बकरीद पर कैश ले जाने के झंझट से बचें और रास्ते से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड स्कैन करें और पैसे ट्रांसफर करें बिल्कुल फ्री। तो कुर्बानी के लिए पेमेंट हाथ के हाथ बराहे रास्त।
0: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
6: इज्तिमाई कुर्बानी, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल
7: एंड हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओ।
8: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
9: एंड हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स।
10: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
11: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
12: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
4: एंड पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ बराहे रास्त।
12: एंड डेटॉल फूल सोप, ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
4: एंड
13: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, AGS ट्यूबलेट बैटरी दिल को है आराम।
14: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हूँ, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए तरकीब देते हैं। ये आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
15: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
16: कुदरत का निजाम तवाजन पर कायम है।
17: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाजन बिगड़ जाता है।
18: घर के अफराद और आमदन में तवाजन
19: हमारी जिम्मेदारी है।
20: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
15: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
21: लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
22: FM 247365 FM 100।
23: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान,
24: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।

अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आजय समीहा. और उम्मीद करती हूं कि आपकी सुबह हंसी गाती खिलखिलाती होगी हमारे साथ. और नहीं भी हो तो कोशिश कर लें यूरो के थोड़ा सा मुस्कुराने सुबह के वक्त, क्योंकि ये आपकी सुबह को थोड़ा सा बेहतर जरूर बना सकता है. एनीवे सो हम अपनी सुबह का आगाज करते हैं अल्लाह ताला के जिक्र से. और आई होप कि आप भी करते होंगे और आपने फजर की नमाज पढ़ ली होगी. बहुत जल्दी हो जाती है फजर की नमाज, सूरज को पता नहीं क्या जल्दी है, मतलब पौने छह बजे भी ऐसा उजाला हो रहा होता है कि बस पूछो ही ना. खैर लेकिन जरूर अपनी सुबह का आगाज करें अल्लाह ताला के जिक्र से, अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा शुक्र से. हम अपने शो का आगाज करते हैं हमेशा अपने मॉर्निंग शो का कुरान शरीफ के तर्जुमे के साथ. तो आइए पढ़ते हैं. आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम. यहां पढ़ रहे हैं सूरह बलद का तर्जुमा जो तीसरे पारे में है. क्या हमने उसकी दो आंखें ना बनाई और एक जबान और दो होंठ, हमने उसे दो रास्ते दिखाए फिर बगैर सोचे समझे क्यों ना घाटी में कूद पड़ा, और तुझे क्या मालूम कि वो घाटी क्या है, किसी बंदे की गर्दन छुड़ाना या भूख के दिन में खाना देना, रिश्तेदार यतीम को या खाक नशी मिस्कीन को, फिर ये उनमें से हो जो ईमान लाए और उन्होंने आपस में सब्र की नसीहतें की और आपस में मेहरबानी की ताकीदें की. आप सुन रहे थे सूरह बलद का तर्जुमा. और कोशिश कीजिए कि जब भी आप कुरान शरीफ पढ़ें तर्जुमे के साथ पढ़ें. ये बहुत खास दिन है और इसमें भी अल्लाह ताला का बहुत जिक्र करें. बहुत सारे लोग जो हज पे गए हुए हैं, अगर आपके कोई रिश्तेदार हज पे गए हैं तो प्लीज उनसे मैं दरख्वास्त करूंगी कि मेरे लिए भी दुआ करवाएं. और नाम तो याद होगा. और इसके अलावा जो लोग यहां पर वो भी कोशिश करें अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला हम सबको हज करने की तौफीक अता फरमाए. ऑलराइट. और तो फिर हम बताते हैं आपको आज का हमारा टॉपिक क्या है. आज का हमारा टॉपिक ये है दोस्तों कि मतलब आप अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, और या कुछ कर भी रहे हैं या फिर आप बस बैठे हैं किसी के इंतजार के अंदर कि मेरी जिंदगी को इस नबी का इंतजार है. कुछ लोगों को होता है. और खैर तो आप लोगों के मैसेजेस मेरे पास अभी से आना शुरू हो गए. ओके. और एनजी का कैसे हैं, ठीक ठाक हैं. और इसके अलावा सनी मकसूद के भी मैसेजेस आ रहे हैं. तो चलिए थैंक यू सो मच आप लोगों के मैसेजेस का. आज का हमारा टॉपिक ये है कि क्या आप क्या कर रहे हैं अपनी मतलब जिंदगी को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, क्योंकि अपनी जिंदगी को आप खुद ही खूबसूरत बना सकते हैं. अगर आपको लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान को आपकी जिंदगी खूबसूरत बनाने में बहुत इंटरेस्ट है तो ये आपकी खाम ख्याली है. उर्दू देखे मेरी उर्दू खाम ख्याली है जी. आपकी अपनी जिंदगी जो है ना बंदे ने खुद ही अच्छी बनानी है और मतलब पॉजिटिव सोचना है, वरना जिंदगी जो है ना वो मतलब एवी ही चल रही है. मुझे पता आपकी जिंदगी बिल्कुल एवी चल रही है, परेशान है आप और अभी बकरी सर पे है और शॉपिंग का तो भूले ही नहीं. वो कुर्बानी, अगर आपने कुर्बानी का जानवर खरीद लिया है तो उसी की आप बस आओ भगत करते रहते हैं. तो खैर ये हमारा ये तो जिंदगी है, चलती रहेगी. लेकिन खैर फिलहाल हम आप लोगों के लिए प्ले करें पक्के दोस्त का ये गाना. और बच्चों टाइम कम रह गया और मैं सबके नाम जो है नहीं ले पाऊंगी, लेकिन मैं तमाम बच्चों को जिन जिन बच्चों के मुझे नाम याद हैं सारे सबसे इम्पोर्टेंट शेर अली हिद्रा एंड सैयदा उम्मेहानी और सैयदा हमना नुबैद रजा एंड इब्राहिम अबीहा आशान यासान. सो तमाम बच्चे और बाकी भी जो बच्चे हैं समीहा सुभान. द थिंग इज कि अब आई होप कि आप लोग इंजॉय करें अपनी छुट्टियां, क्योंकि अब तो आप लोगों से समर वेकेशन के बाद मुलाकात होगी. होपफुली यू हैव अ ग्रेट टाइम. फिलहाल हम पक्के दोस्त का ये गाना सुनते हैं. तो ये गाना डिसाइड करना भी एक बड़ी बात है कि हम कौन सा गाना डिसाइड करें. तो आज हम करते हैं ये वाला गाना.

0: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: इज्तिमाई कुर्बानी, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल
3: एंड पर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओ।
4: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का। एंड
5: हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स।
6: एंड अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले।
7: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
8: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
9: एंड पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराह रास्त।
10: एंड डेटॉल फिल्टर, ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
11: एंड AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
12: FM 100, like us on facebook.com/FM247365
13: FM 247365.
14: You're listening to Good Morning Pakistan with RJ Samiha.

0: जी आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, और उनको टेलीफोन प्यार हो गया है, और जब प्यार हो जाए तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती है, हर चीज खूबसूरत लगने लगती है इंसान को, और फिर उसके बाद पता चलता है कि अंजाम प्यार का बहुत तकलीफ दे भी होता है, लेकिन कोई बात नहीं। और किसी से प्यार हो ना हो, अपनी जिंदगी से आपको जरूर प्यार होना चाहिए। एनीवेज हमें मैसेज करें और बताएं कि आपका क्या सीन है, क्या आप अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं, या फिर वही जिंदगी आपको चलाई जा रही है, वही सुबह उठते हैं, वही मुंह लेके ऑफिस चले जाते हैं, और वही मुंह लेके ऑफिस से वापस आ जाते हैं। जो भी आपका सीन है हमें बताएं, हमें मैसेज करें, इंतजार रहेगा आप लोगों के मैसेजेस का। आजय समिया के फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं @RJSamia। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
1: It's 8:30 AM. This time check is brought to you by
2: Dettol Cool Soap. ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
3: Hello, guess what? Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition, और वो भी upgraded features, जैसे push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims और sunroof के साथ full premium feel. और price? सिर्फ 64,49,000. प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप विजिट करें।

0: अपने कमाल बैकअप से AGS ट्यूबलेस दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेस बैटरी, दिल को है आराम।
1: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं प्रोफेसर महमूद हसन बात कर रहा हूँ। मैं एक्स प्रेसिडेंट पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी रह चुका हूँ। ब्लड प्रेशर एक खामोश कातिल है, इसलिए इसकी बरवक्त तशखीस और दवा का बाकायदा इस्तेमाल आपको मुख्तलिफ पेचीदगियों जैसे फालज, हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर और आंख की बिनाई जाये होने से बचा सकता है। इसलिए आपको बाकायदा दवा का इस्तेमाल, वर्जिश, नमक और चिकनाई से मुकम्मल परहेज करना।
4: ये पैगाम पाकिस्तान कारिक सोसाइटी और एडको लेबोरेटरीज पाकिस्तान के तावन से नशर किया गया है।
5: कुर्बानी का गोश्त सफेदपोश खानदानों के लिए और खाले तालीम, सेहत, गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330153153 4 और 5।
6: कुदरती अज्जा इंतहाई नाजुक होते हैं, इसीलिए श्वाबे जर्मनी दुनिया का जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस्तेमाल करता है ताकि अज्जा का खालिसपन महफूज रहे और तासीर में इजाफा हो। श्वाबे सिंगल रेमेडीज, जर्मन इनोवेशन और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, जिस पर है पाकिस्तान का 75 साल एतमाद।
7: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
8: नई स्कीम,
9: कमिटी,
10: प्लाट बनाए फरो,
11: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो। इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: कुर्बानी का गोश्त सफेदपोश खानदानों के लिए और खाले तालीम, सेहत, गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330153153 4 और 5।
12: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
13: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें।
5: कुर्बानी का गोश्त सफेदपोश खानदानों के लिए और खाले तालीम, सेहत, गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330153153 4 और 5।
12: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
14: एक दुनी दो, दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2,500।
15: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनामात।
14: एक दुनी दो, दो दुनी चार, दुनी दो, दो दुनी चार।
16: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंट्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत, टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।

0: वाह भाई, गाय बकरे सब बिक गए, कैश रख लिया ना इबादत से।
1: कैश अब जेब में नहीं, बराए राज बैंक अकाउंट में पेमेंट लेता हूँ सिर्फ रात से, यही है कैश की पक्की हिफाजत।
2: तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड बनाएं और पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराए राज।
3: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैस कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैस कैश है ना।
4: तुम कभी ना झुके, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
5: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
6: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
3: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैस कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैस कैश है ना।
7: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
8: इज्तिमाई कुर्बानी, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल
9: एंड हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओ।
10: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
11: एंड हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स।
12: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
13: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
6: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
2: एंड पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराहे रास।
6: एंड डेटॉल फूल सो, ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
14: एंड AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
15: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365

जी आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आरजे समिया। हम लोग बात करें आज के आप लोग अपनी जिंदगी को हसीन और खूबसूरत बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने सेहत का ख्याल रख रहे हैं, अपने गली मोहल्लों की सफाई कर रहे हैं। गली मोहल्लों से मुझे याद आया कि कराची कहीं से ज्यादा मुझे खूबसूरत नहीं लगता। आपको लगता है कराची कॉन्क्रीट का जंगल है, अंडर पास ओवर पास जो भी उन्होंने पुल्स बनाए, खूबसूरत कुछ भी नहीं लगता, खूबसूरत है ही नहीं वो, और अजीब से ग्रे ग्रे मैटर नजर आ रहा होता है। फिर भी लोगों को बड़ा शौक है यहाँ पे घर लेने का, जो करोड़ों रुपए में पहुंच गए। मुझे एक बात बताएंगे कराची के बारे में, जब लोग ज्यादा रिसर्च भी करते हैं तो यह आता है कि ज्यादा से ज्यादा अनलिवेबल बनता जा रहा है कराची, मतलब कि वो रहने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी सबको कराची आना है, आई डोंट नो वाई। अच्छा, और अब ये हो रहा है कि जी इलीगल बिलबोर्ड्स को जो है ना वो कह रहे हैं कि जी हटा दिया जाए, जो इलीगल बिलबोर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं हर जगह आसमान पे। मुझे समझ में नहीं आता कि हर जगह वो इश्तिहार देना चाहते हैं, तो स्क्रीन्स भी लगा दिए डिफेंस के अंदर कि जी स्क्रीन्स देख देख के आप जो है ना वो मतलब डिस्ट्रैक्ट ही हो जाए। कुछ एक पहले के जमाने में बड़ी खूबसूरत खवातीन भी बिलबोर्ड्स में नजर आती थी तो उनको देख के भी लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, एक्सीडेंट भी होना शुरू हो गए थे। खैर, तो ये अब इलीगल बिलबोर्ड्स जो है वो हटाएंगे, लेकिन मुझे एक बात बताएंगे, जिसने भी बिलबोर्ड लगाया है वो फ्री में तो नहीं लगाया, पैसे देके ही लगाया होगा ना उसने, इतना पैसा खर्च करके बिलबोर्ड पे, तो इजाजत लो, बहुत सारे लोगों को रिश्वत दो, उसके बाद तो बिलबोर्ड लगता है आपका। और अब कह रहे हैं कि हटाना है, पहले से कोई लॉ बनाते क्यों नहीं है कि भाई यहाँ यहाँ बिलबोर्ड नहीं लग सकता, क्योंकि खुदा ना खासा अगर बारिश हो गई या कोई तेज हवा भी चल गई शहर के अंदर तो नुकसान हो सकता है और लोगों को जान ही नुकसान हो सकता है। लेकिन नहीं, ये बातें हम सोचते ही नहीं है, पहले पैसे ले लेते हैं उसके बाद हमें ओह माय गॉड ये तो इलीगल है, जब गवर्नमेंट के लोगों को खुद ही नहीं पता चलता कि लीगल और इलीगल क्या है। तो खैर, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर ये बिलबोर्ड भी नजर ना आए हमें तो फिर कराची में और क्या देखें, कम से कम इस जमाने में खूबसूरत इश्तेहार देखने को तो मिल जाते हैं, वरना और क्या है यहाँ पे देखने के लिए। खैर, आप लोगों की पैगामात है, और एनजी कह रहे हैं इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ नॉइज माई लाइफ बिकम्स परफेक्टली स्टिल एंड ब्यूटिफुल द मोमेंट आई हेयर सैम्स मेलोडियस वॉइस, इट इजंट जस्ट अ साउंड, इज द रिदम। थैंक यू सो मच एनजीक, और लोग समझेंगे कि मैंने खुद ही कहा आपको मेरी तारीफ करने के लिए, लेकिन ऐसा है नहीं, एनजीक ने खुद दिल से तारीफ की है, और मुझे पता ये भी है कि एनजीक बहुत कम चीजों की तारीफ करता है। थैंक यू सो मच, और इट मीन्स अ लॉट टू हैव लिसनर्स लाइक यू एनजीक, जो इतने रेगुलर लिसनर्स हैं, सुनते हैं, मैं गायब भी हो जाती हूँ बीच में, फिर भी याद रखते हैं, वरना आजकल

0: लिसनर्स लाइक यू एंड जीक जो इतने रेगुलर लिसनर्स हैं, सुनते हैं, मैं गायब भी हो जाती हूँ बीच में, फिर भी याद रखते हैं, वरना आजकल यू नो आंख उजल पहाड़ उजल वाला सीन है. और आबिद अमीर कह रहे हैं, जिंदगी खूबसूरत बनाने से क्या मुनासम, या सेहतमंद तंदुरुस्त जिंदगी, या फिर सेलिब्रेशन इंजॉयमेंट वाली तारीफों वाली जिंदगी, या फिर सारा माल और खजानों वाली जिंदगी. आबिद अमीर, ये सारी चीजों की कॉम्बिनेशन एक खूबसूरत जिंदगी की डेफिनेशन है. और लेकिन सबसे जरूरी है सेहत. सेहत अगर आपके पास है तो फिर आप बाकी चीजें भी इंजॉय कर सकते हैं. आप सेहतमंद हैं, आप पैसे भी कमा सकते हैं. आप सेहतमंद हैं, आप इंजॉय भी कर सकते हैं, खाना पीना भी कर सकते हैं. लेकिन अगर आपकी सेहत ही सही नहीं है, जो धुएं खा खा के और सिगरेट पी पी के लोग अपनी सेहत खराब कर रहे होते हैं और ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं, गम भुलाने के लिए हम क्या करें, ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं. अभी बकरीद में बस लोगों ने यही डिसाइड किया हुआ है कि क्या कुछ खाना है, मतलब अभी से डिसाइड किया. मैंने भी डिसाइड किया हुआ है, वैसे ये बात नहीं है, मटन का कीमा खाना है मैंने, मेरा एक मिशन है मटन का कीमा. क्योंकि व्हेन आई ट्रैवल और पंजाब में मैंने लोगों का ऑब्सेशन देखा है मटन के कीमे के साथ. मैंने कहा मैं क्यों पीछे रहूं, मटन का कीमा क्या सिर्फ पंजाब वाले खाएंगे, क्या हम नहीं खा सकते? खाएंगे इंशाल्लाह. बकरीद इज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि मटन का कीमा मिल जाए आपको. और जी, और आबिद अमीर का ये अस्सलाम वालेकुम, पता था कि आज आप जरूर आएंगे. कैसे बच्चे जो छुट्टियों पर जा रहे हैं, आखिरी मुलाकात तो जरूरी थी आज के प्रोग्राम की, बहुत ही प्यारी रौनक. और दो महीने के लिए अलविदा, बाय बाय कहते हैं. लकी है, छुट्टियां हो रही है. और सज्जाद अली कह रहे हैं, सज्जाद अली लाडला, अपने ठीक होने का दिखावा करें, जिंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, दर्द छुपाना दूसरों के तर्ज खाने से कहीं ज्यादा खूबसूरत है. हाय हाय हाय, क्या बात कर दी. मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो वाकई में न जाने कितना अपने अंदर दर्द छुपाए हुए होते हैं. आप ऊपर से मुस्कुरा रहे होते हैं, कोई हेल्प नहीं चाहते, किसी से मांगते, लेकिन ऐसे लोगों का दर्द आपको खुद समझना चाहिए. और वजाहत हाशमी ने यूके से मुझे मैसेज भेजा. वजाहत हाशमी, क्या खा रहे हैं यार आप? इज इट बिरयानी? लेट मी सी द पिक्चर. अच्छा, वहां पे आप सुबह, वहां तो आप नाइट ड्यूटी कर रहे होते हैं ना. ओह, यू आर हैविंग अ ड्रिंक, इट लुक्स लाइक रसबेरी ड्रिंक एंड यू नो अ बिरयानी. वाओ, एंजॉय भाई एंजॉय. खाने पीने की बातें बड़ी होंगी, क्योंकि हमारी जिंदगी खूबसूरत होती ही खाने से. हमें खाना मिल जाए और जिंदगी में अच्छे लग रहे. आलिया अंसारी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आलिया अंसारी, आप क्या कहते हैं इस बारे में कि जिंदगी को खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है? आपकी अपनी पर्सनल कोशिशें क्या है? डू यू हैव एनी इंटेंशन कि यू नो कि मैं अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स ले रहा हूं? तो हमें जरूर बताएं, हमें मैसेज करें. आलिया अंसारी के अलावा आप भी बता सकते हैं. हाँ, जब जा रहे हैं व्हाइट शर्ट वाले और लाइट ब्लू कलर, कराची में लोग बहुत पहनते हैं लाइट ब्लू कलर की शर्ट, तो आप हमें मैसेज करें आरजे समिया के फेसबुक पेज पे या आरजे समिया इंस्टाग्राम पे. और एक और तीसरा तरीका भी है कि अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, टाइप करें KHI स्पेस आपका नाम, आपका मैसेज, उसे भेज देंगे 36361. इंतजार रहेगा आप लोगों के मैसेजेस का. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद.
1: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga
2: aur bhul ja. Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? सिर्फ 64,49,000. प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें.
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे. जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का.
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं प्रोफेसर महमूद अल हसन बात कर रहा हूँ. मैं एक्स प्रेसिडेंट पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी रह चुका हूँ. ब्लड प्रेशर एक खामोश कातिल है, इसलिए इसकी बरवक्त

0: वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज हम बात करें इस बारे में कि आप अपनी जिंदगी को कैसे खूबसूरत बना रहे हैं या छोड़ दिया जिंदगी को, बस चल रही है जिंदगी. हमारे पास सनी मकसूद का मैसेज आया कि हार्ड वर्किंग और अपनी फैमिली को खुश रखने की कोशिश और उनकी अच्छी लाइफ बनाने की कोशिश. कितनी अच्छी बात है कि लोग बस अपनी फैमिली को खुश रखें, उसके लिए मेहनत करें, और यही बड़ी मतलब कामयाबी है. लेकिन उसके साथ साथ अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचें, क्योंकि अक्सर जो डैडीज होते हैं, मैंने देखा है फादर्स, वो इतनी मेहनत कर रहे होते हैं और अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे होते हैं, मगर अपनी सेहत का जो है वो ख्याल नहीं रखते. और मेरे ख्याल से फादर्स डे पे जो बेस्ट प्रेजेंट आप दे सकते हैं अपने फादर को, वो ये है कि आप उनको जाके ना पूरा फुल मेडिकल चेकअप कराएं कि सर हम आपको फुल मेडिकल चेकअप, एक और MRI स्कैन भी कराएं, तो ताकि पता चले कि भाई अब आप बीमार तो नहीं है, उनकी सेहत ठीक है. तो क्योंकि डॉक्टर से मिलने से आप उनकी मतलब बेहतरी आएगी, कोई नुकसान नहीं है. बजाय इसके कि हम इतने आजकल तो परफ्यूम्स ही इतने महंगे महंगे हैं, तो आप प्लीज जरूर टेस्ट आप डॉक्टर से जाके टेस्ट लिखवाएं, फुल मेडिकल चेकअप उनका, उनकी ब्लड रिपोर्ट. और अबू से भी बोल देंगे, जिस तरह अबू कहते थे ना बचपन में, तुमने पास आना है, पास होना है, तुमने फर्स्ट होना है, क्या बोल रही हूँ मैं, रिवर्स बोल रही हूँ तुमने जो है ना वो बस ब्लड टेस्ट में पास होना है, ये आपने अपने अबू को बोले कि आपने पास होना है, वरना जो है ना ये टेंशन ही रहेगी. तो इसलिए जो है ना वो चलिए जी. एनजीक साहब जो है वो हमें अभी ऑनलाइन नहीं सुन सकते, लेकिन हम बोल देते हैं एनजीक के आपका मैसेज आया है. आपका मैसेज पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगा है, खासतौर पर जो आपने मेरे लिए तारीफें की हैं. आई रियली लाइक इट एंड आई होप यू आर लिविंग एंड आई एम श्योर दैट यू आर लिविंग अ वेरी ब्यूटिफुल लाइफ. क्योंकि एनजीक जिम जाते हैं और जिम जाने वाले लोग और अपनी सेहत का ख्याल रखने वाले लोग यही पैगाम देते हैं दूसरों को कि वो अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं, राइट. और तो हमें इंतजार है आप लोगों के मैसेजेस का भी कि आप जिन्होंने हमें अभी सुनना शुरू किया है. वजाहत हाशमी जो है हमें यूके से बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें भेज रहे हैं, वो तो बड़ी जिंदगी गुजार रहे हैं भाई, क्या बात है. खूबसूरत साफ सुथरी सड़कें हैं, प्यारा सा आसमान, क्या मौसम. और एक हम है कि हम प्यारे से मौसम के साथ साथ साफ सुथरे रोड्स को भी तरस ही जाते हैं. तो मैं यही बोलूंगी कि आप इंतजार ना करें, अपनी गली मोहल्लों को साफ रखें. खासतौर पर कुर्बानी का वक्त है, जानवर इधर उधर घूम रहे हैं, तो अपना जरूर आप जानवर को खाना खिलाएं, लेकिन ये भी देखें कि गली आपका गली मोहल्ला साफ है. और कुर्बानी के बाद भी जो है आप सफाई का जरूर ख्याल रखें. ये नहीं है कि कुर्बानी कर दी, बड़ा एहसान किया है और गली और मोहल्ले को गंदा छोड़ दिया है. पता नहीं ये कब हमारी कौम जो है ना समझेगी कि खूबसूरती आपसे शुरू होती है. और खैर बातों का सिलसिला जारी हो सारी है, आप लोग मुझे मैसेज करें. अब मैं नहीं बता रही, इतनी दफा बता चुकी हूँ, खैर बता देती हूँ कि आप मुझे मैसेज कर सकते हैं आरजे समिया के फेसबुक पेज पे या आरजे समिया इंस्टाग्राम पे. और हम ये जानने में बड़े इंटरेस्टेड हैं कि आप अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए मतलब क्या कर रहे हैं, क्या अमली तौर पर काम कर रहे हैं. मिलते हैं एक ब्रेक के बाद.
1: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
3: Hello. Guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? सिर्फ 64,49,000. प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें.
4: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे.
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का.
6: कुर्बानी का गोश्त सफेदपोश खानदानों के लिए और खाले तालीम सेहत गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330153153 4 और 5.
7: ہر شعبے سنگل ریمیڈی سخت ترین کوالٹی چیک سے گزرتی ہے تاکہ خالص پن اور اصلیت برقرار رہے، کیونکہ جب بات صحت کی ہو تو سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں۔ شعبے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور حمید جرنل ہومیو پاکستان، 75 سال سے قابل اعتماد۔

जी आप हैं हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में और मैं भी आपके साथ साथ हूँ। आज हम बात कर रहे हैं इस बारे में कि आप अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए क्या कर रहे हैं। आप ज्यादा सज रहे हैं, संवर रहे हैं और जिम जा रहे हैं, भाग रहे हैं, या वही पुरानी कपड़े पहन के वही पुराने ऑफिस जाए जा रहे हैं और वही पुरानी मोटरसाइकिल है, ये भी है लोगों का। और मैंने बहुत खूबसूरत लोग भी देखे, खूबसूरत लोग मतलब उनकी आम सी लाइफ को भी वो खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि जो काम भी करेंगे अच्छे से करेंगे। और मतलब मैं उस तरीके की नहीं हूं, मैं बस मैं लोगों आई एम लाइक थिंक आई थिंक आई एम एन ऑब्जर्वर आर्टिस्ट। जो पहले तो था कि अच्छा अब क्या हो गया है जिंदगी दुनिया में, खासकर दुनिया में और जिंदगी में खूबसूरती की कमी इसलिए भी हो गई है कि हर चीज में प्राइस टैग है। पहले आर्टिस्ट अगर किसी ने कहा हो पिकासो से या जो है वो लियोनार्डो दा विंची से कि भाई क्यों बना रहे हो पेंटिंग, क्यों बना रहे हो पेंटिंग, इसलिए बना रहा था कि बस वो कुछ खूबसूरत क्रिएट करना चाह रहा था। कोई किताब किस लिए लिखता है कि वो कुछ दुनिया को देना चाहता है, अपने ख्यालात शेयर करना चाहता है। लेकिन आजकल जी अच्छा किताब इसके इतने पैसे आएंगे, तुम कितना कमा लोगे इस पैसों से, और मतलब लिटरली आप ये देख रहे होते कि पैसा कितना कमा रहा है बंदा। और म्यूजिक अगर कोई बंदा बच्चा बोल दे कि मैं तो म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ, तो मैं वो बंदा बोलेगा हे बेटा तबीयत तो ठीक है, तुम म्यूजिशियन बनना चाहते हो, कितने पैसे कमा लोगे, तुम्हारे घर नहीं चलेगा ये वो। और खुद हालांकि पूरी जिंदगी सारे गाने मेहदी हसन, किशोर कुमार, वाइटल साइंस, जुनून की जिंदगी की वजह से उनकी जिंदगी बेटर है, लेकिन नहीं बच्चा अगर चला जाए म्यूजिक में तो नहीं नहीं नहीं। मैं सोचती हूँ कि आर्टिस्ट नहीं होते, शायर नहीं होते, इवन नाउ मूवी मेकर्स नहीं होते, ड्रामा मेकर्स नहीं होते, आपकी जिंदगी कैसी होती, अजीब सी, फीकी फीकी सी। तो ये बड़े प्यारे लोग होते हैं जो सिर्फ पैसों के बारे में नहीं सोचते, वो कुछ खूबसूरत क्रिएट करना चाहते होते हैं। और सोचे और आपने देखा जितने सियासतदान है खास में पाकिस्तान में सिवाय एक दो के, और तो वो मतलब सियासतदान हो गए, गवर्नमेंट के, और जो सीएसपी ऑफिसर्स होते हैं खूबसूरत नहीं होते। हमने देखा है कोई जब बंदा खुद ही सोना है, उसने मुल्क को क्या सोना बनाना है। मैं होती यकीन करें मैं सिर्फ खूबसूरत लोगों को रखती, क्योंकि यार जो खूबसूरत लोग होते हैं ना अपने, चलो ठीक है थोड़े से सेल्फ ऑब्सेस भी होते हैं, नार्सिसिस्टिक भी होते हैं, लेकिन वो खूबसूरत बनाते हैं। और जो कराची का हाल है मैं कह रही हूँ भाई, ओ हेलो, ये जितने मेयर गवर्नर साहब, भाई किसी खातून को रख लें, किसी खूबसूरत खातून को, फिर आप देखें। और मैं एक शर्त बता रही हूँ, खूबसूरत खातून को रखिएगा। जो खूबसूरत खातून होती है ना वो खवातीन, वो बड़ा उनको होता है कि यार हमारे आसपास की जगह खूबसूरत हो, रोड खूबसूरत हो, मोहल्ले के अंदर आप काउंसलर्स जो रख रहे हैं वो सब खूबसूरत खवातीन रखें, फिर आप देखें कि कितना अच्छा खूबसूरत जगह कराची। सारी जगह मर्द और कोई एक भी सोना नहीं। और जहां तक मैं बिलबोर्ड की बात करूं ना, जैसे इन गवर्नमेंट के बिलबोर्ड हैं जैसे पता नहीं पूरे मोहल्ले की तस्वीरें उसमें डाल देते हैं, एक भी अच्छा नहीं है। मैं सोचती हूँ अच्छा लड़के कॉन्शियस भी नहीं होते, इतनी बकवास तस्वीर वहां लगी हुई है, सब देखते हुए जा रहे हैं। लड़की की तस्वीर ऐसी है ना अच्छी ना हो वो गिरा देगी, वो पैसे देगी, बोलेगी बिलबोर्ड गिराओ भाई, मेरी तस्वीर मुझे पसंद नहीं आ रही। लड़कों के कॉन्फिडेंस की क्या ही बात है, गंजे होकर भी कॉन्फिडेंस होते हैं, कितने कॉन्फिडेंट गंजे होकर भी टीवी पे आ रहे होते हैं। और अगर लड़की की जगह से बाल भी गिर जाए, बोलेगी हाय हाय डिप्रेशन में चली जाती, मेरे बाल गिरे। और लड़कों के सारे बाल गिर जाते हैं फिर भी कॉन्फिडेंट होते हैं, क्या बात है लड़कों की वैसे, है ना। फिलहाल तो हम बहुत खवातीन वाला गाना लगा रहे हैं क्लासिक टाइम के अंदर अपने, और तो ये क्लासिक टाइम है। आगे जिन्होंने हमें अभी सुनना शुरू किया उनको बोले लगे कि जी हम इतने पुराने गाने क्यों लगा रहे हैं, तो 9 से 9:15 के दरमियान हम पुराने गाने ही लगाते हैं, आगे जाके नॉर्मल लाइफ की तरफ हम आ जाते हैं, तो आप टेंशन ना लें। फिलहाल हम इकबाल बानो की आवाज में एक खूबसूरत गाना के जी पायल में तो गीत है छमछम के, तो मतलब वो पायल भी खूबसूरत खातून ही पहनेंगी, उसके बारे में गाएंगी भी खूबसूरत खातून। सोचे खवातीन ना हो तो ये मर्दों की दुनिया अजीब सी हो ना, ग्रे, अजीब सी ग्रे, जैसे कि कराची के अंडर पासेस और पुल्स हैं। तो आइए सुनते हैं गाना।

0: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: इज्तिमाई कुर्बानी, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल
3: एंड हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओ।
4: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: एंड हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स।
6: एंड अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
7: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
8: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
9: एंड पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराह रास्त।
10: एंड डेटॉल फिल्टर, ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
11: एंड AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, AGS ट्यूबलेट बैटरी दिल को है आराम।
12: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
13: FM 247365 100 FM।
14: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
15: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔

जी आप हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आजय समीया। हम बात करेंगे खूबसूरत जिंदगी कैसे जी जाए। और मैं सोचती हूं कि मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां मतलब सऊदी अरेबिया के अंदर वहां पे कोई दूर दूर तक कोई पहाड़ कोई बहुत ज्यादा खूबसूरती या फ्लावर्स या कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन उनकी अपनी जात के अंदर इतनी खूबसूरती थी कि पूरी कायनात उनके कदमों पे पूरी कायनात की खूबसूरती उन पर कुर्बान। और वो जहां पे थे वो था बिल्कुल एक बयाबान सी जगह। तो ये इंसान के अपने अंदर बड़ी रोशनी होती है बड़ी खूबसूरती होती है अगर वो उसको पहचाने। और ये जो पूरी दुनिया बनी है दुनिया की जो खूबसूरती बनी है वो इंसानों के लिए बनी है। अल्लाह ताला खुद हुसन को बहुत पसंद करता है। जब भी आप देखें कि कभी आपने देखे छोटे छोटे फ्लावर्स भी जब खिले हुए होते हैं क्यारियों में पर्पल कलर के येलो कलर के वो भी कितने खूबसूरत लगते हैं। तो आप अपनी जिंदगी की खूबसूरत नहीं बना रहे। इवन परिंदे कुछ परिंदों में इतने खूबसूरत रंग है अगर आपकी डॉक्यूमेंट्री देखें परिंदों की तो वो इतने आप सोचें कि अल्लाह ताला ने एक परिंदे के अंदर कितने रंग जो है वो डाले हैं। और किस लिए डाले हैं? सिर्फ कि ए इंसान तू देख ले और तू खुश हो जा। खूबसूरती आपको मतलब इस लाइक कि वो आपको कोई बहुत सारे पैसे नहीं दे देगी लेकिन खूबसूरती सिर्फ आपको जिंदगी लिवेबल बनाती है जिंदगी जीने लायक बनाती है। कि आपकी जिंदगी में खूबसूरती ही ना हो इर्द गिर्द में तो आप क्या करेंगे? आपको बच्चे क्यों इतने प्यारे लगते हैं? बच्चे क्यूट होते हैं एक तो, और बच्चे अब जिंदगी से भरपूर होते हैं वो छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाते हैं। कभी आप भी ऐसे ही थे छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाते थे और फिर अब तो ये हो गया कि जो बड़ी से बड़ी बात भी हो जाएगी ना कुछ लोग जो हैं वो बस सड़े के सड़े ही रहेंगे वो कभी खुशी नहीं होंगे। मैंने ऐसे लोग भी देखे अच्छा हो गया अच्छा मैं एक्साइटेड हो रही होती हूँ अरे वाह भाई मुबारक हो आपकी प्रमोशन आ गई मुबारक हो आपकी गाड़ी आ गई। मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ है मुबारक हो आपकी मंगनी हो गई लेकिन वो ऐसे होते हैं हाँ जी थैंक यू। मैं कहा मैं क्यों ज्यादा खुश हो रही हूँ हमेशा मैं लोगों के लिए ना ज्यादा ही खुश हो रही होती पता नहीं क्या ऐसी बात है। खैर ये खैर मेरा स्टाइल है आप लोगों का क्या स्टाइल है हम आपके मैसेजेस पढ़ के जानते हैं। साबर भट्टी कह रहे हैं हेलो शहजादी शहजादी हूं मैं हाउ आर यू गुड मॉर्निंग शहजादी फूल की तरह मुस्कुराते रहो आपकी आवाज कितनी अच्छी है प्लीज प्लीज सॉन्ग आ जा तेरी याद में दिल बेकरार है गाना लगाते हैं कौन सा गाना है ये और आई एम गोइंग टू पंजाब शहजादी आपकी आवाज बिल्कुल सुकून देती है। पंजाब जा तो रहे हैं खाली हाथ मत आइएगा है ना कुछ लेकर ही आइएगा हमारे लिए ओके जी। और इसके अलावा भी और लोगों के मैसेजेस है हमारे पास बड़ा अच्छा सा मैसेज आया हुआ था एक मिनट रुक जाए शेख यासिर कदीर साहब का मैसेज था और हम चलेंगे उनके मैसेज की तरफ चलते हैं। एक तो ये फेसबुक भी जो है ना वो ऐसा हो गया कि मैसेजेस जो है ना वो ऊपर नीचे हो जाता है लेकिन कोई बात नहीं हम कोशिश करेंगे कि उनका मैसेज शामिल करें। यासिर करिए कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम समिया जी सुबह खैर कैसी हैं आप। समिया जी मैं अपने लाइफ का ख्याल रखता हूँ रोज कुरान की तफसीर पढ़ता हूँ अपनी फैमिलीज के साथ टाइम गुजारता हूँ और उनके साथ एंजॉय करता हूँ हर सेकंड मिनट अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उसने इतनी खूबसूरत जिंदगी सेहत अता की है। बिल्कुल सही है सेहत के साथ अता की है शुक्र जो है ना वो हर चीज को खूबसूरत बना देता है। हमारा आई थिंक कॉम्पिटिशन जो है आपस में वो शुक्र का होना चाहिए अच्छा तुमने कितना शुक्र किया मैं तो हर वक्त ही शुक्र करता हूँ ये वाली सोच अब हमारी होगी ना तो मैं आप देखिएगा जिंदगी बेहतर होती है। इवन सूरह लुकमान में जो एडवाइस हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने जो है वो की थी अपने बेटे को वो बहुत खूबसूरत एडवाइस है वो जरूर पढ़नी चाहिए और बहुत लंबी सूरत नहीं है सूरह लुकमान वो तर्जुमा इतना खूबसूरत से कहता है कि शुक्र करो अल्लाह ताला का शुक्र करो। शुक्र करना अल्लाह ताला को बहुत बहुत बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि जब आप शुक्र करते हैं तो बस ये है कि यार अल्लाह ताला मैं खुश हूं जो भी तूने मुझे दिया है मैं खुश हूं और मैं मस्त हूं बिल्कुल मस्त। और अभी टेंशन ना लें आप हमें मैसेज करें आजय समिया के फेसबुक पेज पे आजय समिया के इंस्टाग्राम पे। और एक और तरीका भी है कि अपने मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें कि HI स्पेस आपका नाम आपका पैगाम और उसको भेज दें 3636 पर इंतजार रहेगा आपके मैसेजेस का और ये जानने का कि आप अपनी जिंदगी को कैसे खूबसूरत मतलब मजीद खूबसूरत बना दें ताकि हम भी कुछ सीख सकें आपसे। और अभी हम आपके लिए वाइटल साइंस की आवाज में प्ले कर रहे हैं खूबसूरत सा गाना जो हम डेडिकेट कर रहे हैं एनजीक को और शहरियार साहब को अगर वो सुन रहे हैं और भी लोग हैं जो वाइटल साइंस के फैंस हैं आइए सुनते हैं।

0: जाने क्या था उन आंखों में, दिल की दिल में ही रह गई. तो खूबसूरती का एक मैजिक होता है, और आप खूबसूरत इंसान के सामने नर्वस भी हो जाते हैं, जैसे कि इस गाने में थे कि वो कौन थी, तमाम शहर उसके हुस्न में गुम था. हमारे पास आप मैसेज आया हुआ था आली अंसारी का, तो आली अंसारी के मैसेज की तरफ हम चलते हैं. और आली अंसारी कह रहे हैं कि जी टुडेज टॉपिक इज रियली इंटरेस्टिंग एंड वी कुड टॉक अबाउट इट एट लेंथ, बट कीपिंग टाइम इन माइंड आई मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ. प्रेयर गिव्स पीस टू माई सोल एंड स्टेइंग क्लोज टू नेचर ब्रिंग्स मी काम. आई स्पेंड टाइम विद माई चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स एंड आई शेयर बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल थिंग्स विद माई वाइफ. एवरी डे आई रिफ्लेक्ट ऑन माई अचीवमेंट्स एंड मिस्टेक्स. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टेइंग अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल इज ऑल्सो अ की टू पीस. आली अंसारी कह रहे हैं कि वो नमाज पढ़ते हैं और उससे बहुत फर्क पड़ता है, फिर नेचर के करीब रहते हैं. हम कराची के अंदर नेचर के करीब यही रह सकते हैं कि लॉन के फूलों को देख ले बंदा, और या जानवरों के साथ टाइम गुजारे, और बस टॉक्सिक लोगों से भी दूर रहना चाहिए. नेगेटिव लोग जो हो ना, उनको अपने जिंदगी से निकाल दें तो आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है. फिलहाल थैंक यू सो मच आली अंसारी हमेशा की तरह इतने अच्छे मैसेज के लिए. आप लोग भी हमें मैसेज करें आजय समिया के फेसबुक पेज पे या आजय समिया इंस्टाग्राम पे.
1: It's 9:30 a.m. This time check is brought to you by
2: Dettol Cool Soap. ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए.
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे.
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का.

0: पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: कुर्बानी का गोश्त सफेदपोश खानदानों के लिए और खाले तालीम सेहत गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330-153-153-4 और 5।
2: शिफा वहाँ से शुरू होती है जहाँ कुदरत मुस्कुराती है। श्वाबे सिंगल रेमेडीज, कुदरत के अनमोल खजानों और जर्मन महारत का शाहकार, जिन्हें आप तक 75 सालों से पाकिस्तान में पहुँचा रहे हैं, डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो।
1: कुर्बानी का गोश्त सफेदपोश खानदानों के लिए और खाले तालीम सेहत गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330-153-153-4 और 5।

0: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
2: नई स्कीम,
3: कमिटी,
4: प्लाट बनाए फरो,
5: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो। इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
7: कुर्बानी का गोश्त सफेद पोश खानदानों के लिए और खाले तालीम, सेहत, गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330-153-153-4 और 5।
6: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
8: एक दुनी दो, दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2,500।
9: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनामात।
10: इंट्रासिव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
11: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।

0: भाई गाय वगैरह सब बिक गए, कैश रख लिया ना इबादत से?
1: कैश अब जेब में नहीं, बराए राज बैंक अकाउंट में, पेमेंट लेता हूँ सिर्फ रात से, यही है कैश की पक्की हिफाजत।
2: तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड बनाएं और पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराए राज।
3: तुम कभी ना झुकी मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
4: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
5: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
6: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरे खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
7: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
8: इज्तिमाई कुर्बानी, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल
9: एंड हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे।
10: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
11: एंड हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स।
12: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
13: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
5: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
2: एंड पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराहे रास्त।
5: एंड डेटॉल फूल सोप, ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
2: एंड
14: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
7: FM 100, लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365। FM 247365।
15: Good morning, Pakistan, with RJ Samiha.

0: ये खूबसूरत होगा तो आपकी लाइफ खूबसूरत होगी। तो अगर आप लोगों से अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकते या आप मुस्कुरा नहीं सकते तो बेहतर है कि आप घर में ही रहें। मैं सब लोगों को बोलूंगी कराची के अंदर, बिल्कुल भी जो कराची के अंदर जो कस्टमर सर्विस को हम रोते रहते हैं कि यार मतलब ज्यादातर हर जगह, बहुत कम ऐसी जगहें होंगी कराची के अंदर क्या बोले, भले आप उनको कॉल करें या भले आप उनसे वैसे मिलें कि वो बहुत हैप्पी और खुश मिजाज, हेलो सर कैसे हैं, ठीक ठाक है, क्या अच्छे लग रहे हैं। मैं होती तो ऐसी होती कस्टमर सर्विस, लेकिन खैर मैं नहीं हूं तो, और ठीक ठाक है सर मजे में, लेकिन ज्यादातर अब लेकिन जो कस्टमर है वो भी सड़े हुए हैं, हर कोई सड़ा हुआ ही रहेगा तो बेचारे वो भी क्या करें, जो सड़े लोग भाई। जब आप जाएं कहीं भी तो आप भी अपनी स्माइल लेके जाएं, उससे पूछ लें कैसे हैं आप, आपको अपनी जॉब पसंद है, अच्छे लग रहे हैं, टाई आप पे सूट करिए, कभी आपने बोला है किसी से? अच्छा लड़के तो बिल्कुल तारीफ नहीं करते दूसरे की, तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी, लड़कियां तो फिर भी पूछ लेती है यार सूट तो बड़ा अच्छा है कहां से लिया, लड़के नहीं मैंने घर का तारीफ, जैसे कि तारीफ करना मन आए। खैर आप इससे पहले कि बिल्कुल ही टाइम नहीं बचता गानों का, बातों में हम खो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए सही मैं गाना लगा दूं कि नहीं, मेरे ख्याल से टाइम जो है ना वो फिर गाना कट जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, एंड में हम वो गाना लगा देंगे। होपफुली आप लोग भी मुझे मैसेज करेंगे अभी और बताएंगे कि अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए आप कौन सी मेहनतें कर रहे हैं, और हम मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
1: इट्स 9:45 AM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय फीनिक्स बैटरीज।
2: फीनिक्स लगा और भूल जा, फीनिक्स लगा और भूल जा।
3: कुर्बानी का गोश्त सफेदपोश खानदानों के लिए, और खाले तालीम सेहत गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330-153-153-4 और 5।
4: ट्रेडिंग ट्रस्ट मी ब्रो,
5: नई स्कीम
6: कमिटी
7: प्लाट बनाए फरो,
8: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
9: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में, और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।

0: पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: कुर्बानी का गोश्त सफेद पोश खानदानों के लिए और खाले तालीम सेहत गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330153153 4 और 5।
2: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
4: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
5: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।

जी आप हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, और आज हम बात करें कि अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए आप क्या कोशिश कर रहे हैं। वो या कुछ भी कोशिश नहीं करें, वही सिगरेट, वही गुटखा पान। लेकिन मैं इतने लोगों से मिलती हूँ ऐसा, तो ना अपने आपको बिल्कुल ही छोड़ दिया है, ना वो अपने मौसम का ख्याल कर रहे हो। कराची के लोगों ने बिल्कुल ही छोड़ दिया है। अब कराची के लोगों क्या बोलूंगे भाई, अगर धूप में ऐसे चलते रहोगे तो रंग तो काला होगा, इतना काला भाई, मतलब सीरियसली जो है ना वो रंग एकदम लोगों के काले हो रहे हैं भाई। सनस्क्रीन एक ऐसी चीज है जो धूप है ना उसे लड़कियों के लिए नहीं होती कि लड़कियां उसे दिफा करें अपनी स्किन का, लड़कों को भी दिफा करना चाहिए। कुछ लगा लें क्रीम, इतनी क्रीमें वो इश्तेहार भी अब तो बन गए लड़के लगा रहे हैं मुंह पे, तो आप लड़की नहीं हो जाएंगे बल्कि आपका रंग इतना ज्यादा काला हो जाएगा डीप कि आपकी अपनी बीवी डर जाएगी कि हाय अल्लाह शादी तो गोरे लड़के से की थी अब क्या हो गया है। तो खासतौर पर जो लोग मोटरसाइकिल पे सफर ज्यादा करते हैं उनको चाहिए कि अपनी स्किन का ख्याल रखें, हेलमेट पहने। अब तो खैर वो ई चलान आ गया है तो हेलमेट पे, अब पीछे वाले भी हेलमेट पहनना शुरू हो गए, भी अच्छी बात है। खवातीन को भी चाहिए कि वो भी हेलमेट पहने जो पीछे बैठती है। और ये भी मैं बोलूंगी कि बच्चे उतने ही पैदा करें जितने आपकी आराम से मोटरसाइकिल पे आ सकें, क्योंकि बल्कि आगे बच्चे आपके दो भी हैं या तीन भी हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मोटरसाइकिल पे नहीं आएंगे। तो पहले गाड़ी ले लें उसके बाद फैमिली प्लान करें, ऐसा कर लें। और जिनका वजन बहुत ज्यादा है खवातीन का, मैं उनसे बोलूंगी खुदारा अपने जोर पे रहम करें। मैं अक्सर देख रही होती हूँ कि बिल्कुल नाजुक अंदाम शोहर के पीछे काफी एक सेहतमंद खातून बैठी होती है और बेचारे से मोटरसाइकिल नहीं चल रही होती, फिर अगर एक आध दो बच्चे हैं तो वहां वो भी पीछे बीच में फिक्स होने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो आपको दो तीन बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो फैमिली छोटी रखें ताकि वो बच्चे आ सके फिट, सेकंड कि अपना वजन भी कम करें थोड़ा ताकि वो जिंदगी उसको भी अच्छी लगे जो आपका लाइफ पार्टनर है। एनीवेज और भी खूबसूरत बनाने के तरीके ये हैं कि अच्छी अच्छी बातें करें। होता ये है कि हम जैसे मैं भी अक्सर अखबार पढ़ के तो मुझे क्या करूं ऐसी सी दिल में से बातें निकलती हैं। हम चाहते हैं हमारी लाइफ खूबसूरत हो लेकिन हमारी बातें खूबसूरत नहीं होती, हम हर वक्त शिकवे शिकायतें। और काफी ऐसे तक तो मैं अखबार ही नहीं पढ़ती थी क्योंकि मैं जिंदगी से प्यार करना चाहती थी, और मतलब अखबार पढ़ के आपको लगता है कि यार क्या जिंदगी, स्पेशली कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा है। तो छोड़ दें यार, जो चीज हम बदल नहीं सकते, जैसे जंगे हम नहीं रोक सकते, कहीं कहर पड़ रहा है वो हम नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ अपनी सर्कल को किस तरह हम बेहतर बना सकते हैं। आसपास अगर आप ऑफिस जा रहे हैं आपके कोलीग्स आपके साथ अच्छे हैं, आप मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, आपकी फैमिली है आपके साथ हंसी मजाक करते हैं, अपने घर को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी गली को अपने लॉन को, तो यही आपकी छोटी छोटी कोशिशें आपकी जिंदगी बेहतर बनाएंगी और आप ज्यादा शुक्रगुजार होंगे। आप जितना शुक्र अदा करेंगे उतना ही अच्छा है। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो बहुत तकलीफ तो जिंदगी गुजारते हैं लेकिन जब भी आप उनसे बात करें और पूछें कि हाल कैसा है तो बोलेंगे अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और कुछ ऐसे लोग भी इनसे कभी पूछो कि आप कैसे हैं और कैसी जिंदगी चल रही है, हर वक्त रोते ही रहेंगे कंप्लेन यार ये नहीं है, ठीक नहीं है, लाइट नहीं है, भले कितना अच्छा कारोबार चल रहा हो बस कारोबार मंदा है आजकल, कारोबार मंदा है, वो यही बातें करते रहते हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि जब आप शुक्रगुजार होते हैं तो आप अपनी जिंदगी की तारीफ कर रहे होते हैं। तो हमेशा अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम शुक्र अदा करते रहें और अच्छी जिंदगी गुजारें। बहुत ज्यादा ये बातें जरूरी हैं। और मुझे अब आप दें इजाजत, बातें बड़ी हो गई, अभी तो मीर का मैसेज आ गया। ऑफकोर्स जिंदगी खूबसूरत बनाने के लिए खूबसूरत तरीन खाने खाते हैं और प्लान कर करके खाते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी भी मैं आपको बात बता दूं कि जिस तरह का घी और तेल इस्तेमाल हो रहा है वो अगर मुस्तकिल आप खाते रहेंगे तो आपकी सेहत बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं रहेगी। तो आप मुझे आपकी सेहत की बड़ी फिक्र है कि आप खाने पीने के बड़े शौकीन हैं लेकिन आप मोटे नहीं, मैं तस्वीर आपकी देखी आप मोटे नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है। तो खाना खाइए जरूर मगर हेल्दी खाइए और हिसाब से खाइए, बहुत ज्यादा लेट नाइट खाना खाने से आपका वजन भी बढ़ सकता है और आपको मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं उनका भी आप शिकार हो सकते हैं। तो सेहत इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का ख्याल रखें, सुबह जल्दी उठें और फिर भाग जाएं घर से, दौड़ पे जाएं। ये सुबह उठने के बड़े फायदे, एक तो आपको नमाज मिल जाती है फजर की, फिर आप सेहतमंद होते हैं, फिर आप बाहर जब जाते हैं वॉक करने तो मोहल्ले के इर्द गिर्द के मसाइल भी आपको पता चलते रहते हैं। तो इस कहते हैं कि बहुत ही मॉर्निंग वॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर मैसेजेस। आई होप कि ईद की तैयारियों में आप मुझे भी याद रखेंगे और गोश्त की मैंने फरमाइश की है, कोई बंदा आप गोश्त मुझे भेजना चाहे मुझे कोई एतराज नहीं है। इट डजंट मैटर कि आप बकरा की कुर्बानी करें या गाय की कुर्बानी करें, हम ले लेते हैं, हर तरह का गोश्त मसला नहीं है।
میں بالکل انہیں اداروں کی طرح گوشت دیجیے. اور اگر آپ پکا کے بھیجنا چاہیں جیسے کہ کباب قورمہ ہے تو وہ بھی ہم لے لیتے ہیں, مسئلہ ہی نہیں ہے یار. کھانے پینے کو ہم کبھی نہ نہیں کرتے. اپنے تمام لسنر سے مجھے بڑی امیدیں ہیں کہ عید پہ وہ ہمارا بھی خیال کریں گے. اور آئی ایم لیونگ یو وتھ دس ٹریک, ہیو اے نائس نائس ڈے, اے بیوٹیفل ڈے, اینڈ انجوائے یور سیلف. اللہ حافظ.

0: टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब. रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है. वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है. जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है. आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है. तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए. कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए. हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा. फैसला आपके हाथ में है.
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.

0: फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर। इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: Permafrost IoT Refrigerator. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
1: हाई ब्लड प्रेशर से आगाही, सेहतमंद माशरे की बुनियाद. वर्ल्ड हाइपरटेंशन वीक 18 से 24 मई के दरमियान सुनिए मालूमाती प्रोग्राम FM 100 पाकिस्तान पर एडको ग्रुप और पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी के तावुन से.
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत.
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
5: FM 247365.

0: Done.
1: Trading, trust me bro.
2: Nice scheme.
3: Committee.
4: Not barai faro.
3: Ye muft investment mashware chodo. Is Eid easy paisa term deposit mein. 50,000 ya zyada invest karo. Aur 13% annual profit ke saath saath. 50,000 cash back jeetne ka mauka bhi pao. Aasani se paise badhao. With easy paisa digital bank. Easy wala bank.
5: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
6: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
7: FM 100 like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
1: नई स्कीम,
2: कमिटी,
3: प्लाट बनाए फरो।
4: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. ट्रेडिंग ट्रस्ट मी ब्रो
2: नई स्कीम
3: कमिटी
1: लाड बनाए फरो
3: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक

0: FM 100's time check. It's 12 noon.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM247365. FM 100.
3: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान
4: इट्स 24 आवर्स नॉनस्टॉप वाइब्रेशन कनेक्टिंग यू होल्डिंग यू विद FM 100.
5: FM 100. FM 100.

0: 75 साल से पाकिस्तान में काबिले एतमाद।
1: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।

0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंट्रासिफ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर्स के एक्शन की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: नशा न परेशानियाँ खत्म करता है, इसका जरूर हमेशा रहता है, ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
5: FM 247365। You're in tune with the lunchtime special on the big one, FM 100.

Assalamu alaikum Pakistan and assalamu alaikum everyone. This is me Fatma Khan aur aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. How are you all? क्या हाल है आप सबके? कैसा गुजर रहा है दिन? क्या कर लिया है? क्या करने वाले हैं? तो भाई एज यूजुअली होंगे आपसे खूब सारी बातें शेयर करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ प्रोग्राम में होगा बहुत सारा म्यूजिक. तो चलें जी, लेट्स बिगिन विद अ म्यूजिकल ट्रैक.

यस एवरीबॉडी, तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज। और अब जबकि आगाज हो चुका है तो ऑब्वियसली हम आपको बताएंगे तरीका कार के कैसे आप बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। तो अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। तो जल्दी जल्दी करें इस तरीकेकार को फॉलो और बन जाएं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। बताएं अपने हाल अहवाल, कैसी गुजर रही है आपकी जिंदगानी। आई होप सो कि आप सबकी जिंदगानी जो है वो अच्छी गुजर रही हो, मजे में गुजर रही हो। ये बहुत जरूरी तरीन चीज है कि हंसी खुशी जो भी वक्त है आपका वो कट रहा हो, वो गुजर रहा हो, कहीं मजबूरी और मुश्किल में ना गुजर रहा हो। तो आई होप फॉर द बेस्ट फॉर एवरीबॉडी। और इसी के साथ साथ तरीका कार जब हमने आपको बता दिया तो हम कर रहे हैं आपके मैसेजेस का इंतजार। और आज आपको बताएंगे कि आज कौन कौन से दिन मनाए जाते हैं, ये भी बताएं या ट्रैक के बाद बताएं। तो मुझे लगता है कि पहले जरा एक और ट्रैक को शामिल करके जरा मजीद आपको एनर्जाइज करते हैं और फिर वापस आकर आपको बताएंगे कि भाई आज कौन कौन से दिनों को मनाया जा रहा है। So, it's a better track. Then we'll be right back.

0: यस माय फ्रेंड्स, सो आई एम बैक। और मैंने कहा भाई चलो जी जरा एनर्जी लेवल को मजीद बढ़ाते हैं अपने तमाम सुनने वालों का एक और जबरदस्त ट्रैक को शामिल कर। सो आई होप सो कि इस ट्रैक को सुनने के बाद तो भाई आपका एनर्जी लेवल ऑब्वियसली हाई हो ही गया होगा। अच्छा भाई, क्या आप जानते हैं आज वैसे तो हम एवरी डे आप लोगों को बर्थडे विश करते हैं जिस किसी की भी सालगिरह है, सो हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन आज है 21 मई और 21 मई को जो है ना भाई वो इंटरनेशनल टी डे मनाया जा रहा होता है। जी हाँ, यानी कि चाय का आलमी दिन है आज के रोज। चाय वो चीज है जिसका जिक्र हम अक्सर और पेशतर करते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने जिक्र किया था, तब इसे नेशनली सतह पर सेलिब्रेट किया जा रहा था, लेकिन आज इंटरनेशनल टी डे है। 21 मई को इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी डे। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज है जिसको रोजाना की बुनियाद पर हमारे घरों में, हमारे ऑफिसेज में, हमारे स्कूल्स, मतलब एवरीवेयर, मतलब चाय का एक ऐसा अहम किरदार हम सबकी जिंदगी में है ना। इसे पिए बगैर ना तो हमारे अंदर ताकत आती है, ना तो हमारे सर का दर्द खत्म होता है, ना हमारे अंदर एनर्जी आती है। तो भाई चाय से तो मेरे लिसनर्स की बहुत ही गहरी यादें वाबस्ता हैं और उनका जो रिलेशन है ना, ये हमने पता किया था लोगों से कि भाई आप चाय कितनी दफा पीते हैं, तो लोगों ने ये भी कहा है कि चाय एक दिन में कितनी दफा पी जाती है, इतनी ज्यादा पी ली जाती है कि गिनी भी नहीं है। तो भाई कोई इतनी चाय पीता है, कोई बस एक सुबह लेता है, कोई शाम में जो है वो चाय का एक कप लेता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई चाय से आपका क्या रिश्ता है ये भी हम जानेंगे एक बार फिर एफएम 100 के प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल में। मुझे भी चाय बहुत पसंद है, लेकिन ना चाय के साथ मुझे लगता है कि बस कुछ होना बड़ा जरूरी है। वो बिस्किट हो, वो पापे हो, वो कुछ भी हो, लेकिन चाय ना रूखी मुझे लगता है कि बड़ी डिफिकल्ट है पीना, तो चाय के साथ कुछ होना लाजमी है। तो फिर चाय मुझे भी बड़ी पसंद है। तो भाई चाय से आपका कैसा है ताल्लुक आप हमें जरूर बताएं। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, कि ये चाय लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। जब तक हम चलते हैं एक अदद ब्रेक की जाने और आते हैं वापस ट्रैक के साथ, तो जरूर हमें बताएं कि आपका चाय से है कितना गहरा ताल्लुक।
1: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
3: Pakistan samet duniya bhar mein bahut si auraton ko mali, jismani, zehni aur jinsi gharelu tashaddud ka samna karna pad raha hai. Chahe aap kisi ke shohar, walid, bhai ya bete hon, apna stress और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालिदा पर हरगिज ना निकालें। हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है, ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें। अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। होम स्क्रीन पर अपना नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके साइन अप करें। हंगामी हालात की सूरत में जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें, जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्स बटन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा कर सकते हैं। याद रखिए, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है और हम सबको मिलकर इसे रोकना है। तशद्दुद से तहफ्फुज आपका हक है। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
1: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और एफएम 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: 100 FM।
5: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फ़िकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ FM 247365

यस एवरीबॉडी, तो चाय से है आपका कैसा ताल्लुक? आज इस हवाले से भी होगी बात, क्योंकि आज इंटरनेशनल टी डे मनाया जा रहा है, तो मैंने कहा कि ठीक है भैया, चाय का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो जरा हम भी जानते हैं कि चाय से आपका है कितना गहरा ताल्लुक। किसी के सर के दर्द की दवा है ये, किसी के सुबह उठने की वजह है ये, किसी को रिफ्रेश करने की दवा है ये, तो मतलब चाय का ना हर किसी का एक अलग ही किस्म का रिश्ता है। अच्छा, कुछ लोग चाय नहीं पीते। अच्छा, और यहां पाकिस्तान में ना जो लोग ये कहते हैं ना कि जी हम चाय नहीं पीते, तो उन्हें ना बड़े गुस्से से देखा जाता है और बड़ी हैरानी से देखकर कहा जाता है कि तुम चाय नहीं पीते, ये कैसे हो सकता है। तो हम ऐसे माशरे में रहते हैं जहां पर अगर कोई ये कहे कि मैं चाय नहीं पीता तो उसे बड़ा बुरा समझा जाता है। ये हाल है चाय से, यानी कि ये इश्क है चाय से कि अगर कोई ये कह दे कि हम चाय नहीं पीते तो उसे सब बड़ा बुरा समझते हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी चाय से कितनी मोहब्बत करते हैं। इस बात का अंदाजा तो आपको मेरी बातों से ही हो रहा होगा। और हमारे पास मैसेज भी आ चुका है जिसे करते हैं शामिल। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हेलो हाउ आर यू। वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक हैं जी हम। कहते हैं आई एम गुड, ऑफिस से सुन रहे हैं हमें। कहते हैं ईद भी नियर है। बिल्कुल ईद भी नियर है। कहते हैं ईद का क्या कहती हैं आप, आलू गोश्त है लंच में? बिल्कुल ठीक है, आपके लंच में पॉसिबल हो तो ट्रैक लगा दीजिएगा। रशीद खान फ्रॉम कराची किंग सिटी। बिल्कुल ठीक है, ईद का तो हम रोजाना की बुनियाद पर ही बात कर रहे हैं कि भाई रौनकें नजर आ रही हैं, अफरा तफरी का आलम है इस वक्त, बड़ा मजा आता है इन दिनों में। तो बिल्कुल यही है ताजतरीन सूरत हाल, और वक्फे वक्फे से हम जो है ना वो बात कर रहे होते हैं ईद को मद्देनजर रखते हुए। तो बिल्कुल रशीद खान, इस पर हम मजीद बात भी करेंगे और साथ ही साथ ट्रैक की जानब भी चलेंगे जिसकी रिक्वेस्ट उन्होंने हमसे की है। तो चलो जी कर लेते हैं शामिल।

Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum everyone. This is me, Fatima Khan, and I'm back again. I'm back again, and you are listening to the program Lunch Time Special with me. तो भाई गुफ्तगू का सिलसिला आप लोगों के साथ जो है वो जारी है और आज ना हम बड़ी मजे की मजीद आपसे बातें भी करेंगे. वैसे तो हम चाय पर बात कर रहे हैं क्योंकि आज इंटरनेशनल टी डे मनाया जा रहा है और जब मैंने कहा इंटरनेशनल टी डे का मौका मनाया जा ही रहा है तो क्यों ना मैं भी जल्दी से चाय पी कर आती हूं. तो मैंने भी जल्दी से चाय पी ली है और एक एनर्जी लेवल जो है ना वो चाय पीने के बाद हाई हो ही जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि चाय पीने के बाद आपका सर का दर्द खत्म हो जाता है. चाय पीने के बाद आप बड़े फ्रेश रिफ्रेश हो जाते हैं और आपको लगता है कि ना आप कभी गौर करेंगे अगर आप या पूरा दिन में एक कप चाय नहीं पीते ना तो पूरा दिन आपको एक रिग्रेट भी रहता है और आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई एक ना कमी रह गई है, कोई एक कमी रह गई है. और फिर जब आप वो रियलाइज करते हैं कि अरे हाँ वो कमी तो एक कप चाय की है, तो वो जब आप ले लेते हैं ना तो आपको अल्लाह जहनी सुकून मिलता है. तो चाय का एक कप अगर ना लिया दिन में तो बस वो कमी रह ही जाती है. ऑल राइट जी, सो प्रोग्राम के सेकंड हाफ की रिवायत ये होती है कि एक अदर ट्रैक हम आपको डेडिकेट करते हैं, तो बिल्कुल जी वो डेडिकेट करेंगे. इसके बाद अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि इस वक्त आप क्या खा रहे हैं, क्या पका रहे हैं और क्या बना रहे हैं.

ओके जी, सो प्रोग्राम के सेकेंड हाफ की रिवायत हो गई कायम, यानी कि एक तो ट्रैक हमने कर दिया है आपको डेडिकेट। अब इसी के साथ साथ अब ये जानेंगे कि भाई आपके लंच में क्या है, क्या पक रहा है, क्या पकने जा रहा है, क्या बन चुका है। तो भाई रशीद खान इज द विनर क्योंकि उन्होंने अपना लंच बता दिया है जो कि है आलू गोश्त। जबरदस्त, और आलू गोश्त तो भाई हम सबका बड़ा ही फेवरेट है। जितनी मुझे लगता है कि हम लोगों को चाय पसंद है ना, उतना ही हमें आलू गोश्त भी पसंद है, क्योंकि आलू गोश्त भी एक ऐसी चीज है जो कि अगर कई दिन ना बने ना तो आपको लिटरली उसकी क्रेविंग होने लगती है। और आप ही कह रहे होते हैं कि भाई आलू गोश्त बना लो, और आलू गोश्त या तो चावलों के साथ बहुत मजे का लगता है, मुझे तो खैर चावलों के साथ बहुत अच्छा लगता है, या फिर नान के साथ बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है आलू गोश्त का कॉम्बिनेशन के लिए ना चावल और नान का बड़ा अहम किरदार है। चपाती के साथ ना आलू गोश्त वो मजा नहीं देता जो कि नान के साथ देता है, ऐसा मेरा कहना है। क्या आप भी मेरी बात से एग्री करते हैं? लेकिन जरूरी नहीं है, आपको चपाती के साथ भी अच्छा लग सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जरा जबरदस्ती गरम गरम नान हो और उसी के साथ आप आलू गोश्त खाएं ना, तो आलू गोश्त का मजा जो है ना वो दोबाला हो जाता है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। लेकिन ये डिपेंड करता है आप पर कि आपको किस तरह अच्छा लगता है। खैर जी, ये तो बात हो गई आलू गोश्त। किसी के साथ साथ भाई तरबूज हैं इस वक्त, फालसे हैं इस वक्त, आम भी आ चुके हैं, और आम के आते ही ना लोग आम की मुख्तलिफ चीजें बनाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी मीठी चीजें तो बनती हैं आम से, यानी कि कोई ट्राइफल बन रहा है, कहीं कोई कस्टर्ड बन रहा है, मैंगो लस्सी बन रही है, और बहुत सारे लोग जो है ना वो मैंगो आइसक्रीम भी बना रहे होते हैं। घर में इस चीज के एक्सपेरिमेंट करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि आम तो सबका मोस्ट फेवरेट फ्रूट होता है। और इसी के साथ साथ भाई बहुत सारे फल और भी मजीद आ चुके हैं, जिसमें जो है वो आड़ू हैं, खुबानियां हैं, और आलू बुखारे हैं, और मैंने क्या देखा था कल, हाँ कल मैंने वैसे करंटली यही चीजें देखी। और कल मैंने जब भी बहुत सारे फल देखे तो मैंने रियलाइज किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कितने ब्लेस्ड लोग हैं कि इस गर्मी में सीजन में हमें कितनी सारी नियमतें अपने इर्द गिर्द देखने को मिलती हैं और हम इसे इंजॉय करते हैं। सबसे ज्यादा तो लोगों के मेरे ख्याल से जितनी ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करें, मेरे ख्याल से तो ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरे ख्याल से आम तो सबका मोस्ट फेवरेट तरीन फ्रूट है। तो भाई वो भी आ चुका है और उसकी भी खरीदारी अब शुरू हो चुकी है। और आम में भी जो कैटेगरीज हैं, सिंदरी, लंगड़ा, चौसा, ये सब मुझे आज तक नहीं पता, और पता नहीं कब, जब मजीद ज्यादा बड़े हो जाएंगे तो पता चलेगा। ये हमारे वालदैन बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि भाई कौन सा आम लाना है। ये तो मैंने तीन कैटेगरीज बताई हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं और उस हिसाब से आमों की खरीदारी की जा रही होती है। तो भाई ये सीजन का पहला आम आ चुका है आपके घर या अभी तक नहीं आया, और अम्मा बने कहा अभी अच्छे वाले आम नहीं आए, अभी थोड़ा और वह गुजरने दो, जब अच्छे आम आएंगे तो लाएंगे। तो क्या स्टेटस है आपके घर का, ये भी हमें जरूर बताएं। और आपके लंच में क्या है, जल्दी जल्दी हमें मैसेज करें, अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, क्लियर ट्राई लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे, और हमें बताएं कि आपके लंच में क्या है।

0: ओके जी, सो आप लोग इस ट्रैक को एंजॉय कर रहे थे और साथ में मजे मजे की ना लंच की गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी था कि भाई आप लोग अपने लंच में क्या खा रहे हैं। वैसे लंच से ज्यादा तो हमने फलों का जिक्र किया इस वक्त, क्योंकि भाई हर तरफ जो ये फल नजर आ रहे हैं इसको देखकर भी हमें अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए कि इतने सारे फल हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। और खुदा का जरूर शुक्र अदा किया करें, जब आप कोई भी अपनी पसंद की चीज खा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है, रहमत है आप पर, कि आप उस चीज को खरीद सकते हैं, उसे खा सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और अच्छा पता है मजे की बात क्या है कि आप उसे खरीदें या ना खरीदें, लेकिन देखकर भी ना आपको इतनी खुशी हो रही होती है और आप बड़ी सेटिस्फाई हो रहे होते हैं। तो बिल्कुल आज जैसे मैंने फलों का ज्यादा जिक्र किया है क्योंकि ये चीजें इस वक्त अवेलेबल हैं। और आपके लंच में क्या है हमें जरूर बताएं। हमें मैसेज करते हैं साबिर भट्टी, कहते हैं हेलो हाउ आर यू शहजादी। वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, आप बताएं। कहते हैं प्लीज ये सॉन्ग चला दें। ओके, और कहते हैं कि जी शहजादी फूलों की तरह मुस्कुराती रहें, लंच में आलू गोश्त है। अरे वाह भाई, बहुत शुक्रिया एक तो आपका, और इनके लंच में भी वही लंच है जो रशीद खान के लंच में, तो डील डन है। चलें जी आपके ट्रैक के साथ हम वापस आएंगे, फिलहाल हम चलते हैं ब्रेक की जानिब और फिर वापस आते हैं इस ट्रैक के साथ।
1: तुम कभी ना झुके मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
2: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
3: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: हंडे। लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स।
4: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
6: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
7: بجے میں رات کے نکل جاتا ہوں راستہ دیکھنے، اور صبح 10 بجے دھوپ کی پہلی کرن لگتی ہے، تھوڑا سا ہیٹ مجھے ملتا ہے، اچانک میرا جو ہے جسم میں ایک جھٹکا سا محسوس ہوتا ہے اور میں اپنا آپ کو کہتا ہوں کہ یار لیکن کی رکھا، اس وقت میرا سینس

All right, जी, so I am back with the track. और भाई चाय पर भी गुफ्तगू चल रही है. लंच में क्या है ये तो हम लाजमी तौर पर आपसे जानते हैं कि भाई इस वक्त आप लोग क्या खा रहे हैं, क्या पका रहे हैं, क्या बना रहे हैं. अच्छा भाई रशीद खान का मैसेज आया है, कहते हैं चाय टी तो मेरी जिंदगी है, चाय पीना हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलता. कहते हैं प्लीज आप भी अपनी चाय का बताएं लिसनर्स को. थैंक्स फॉर माई खूबसूरत ट्रैक. आम भी नहीं खाए खाए. अच्छा जी ठीक है जी. कहते हैं खा भी लेंगे. यस रशीद खान फ्रॉम कराची किंग सिटी. बिल्कुल भाई जरूर खाएंगे, लेकिन वो होता है ना एक टाइम का वेट किया जा रहा होता है कि अभी तो ताजे ताजे हैं, अभी नहीं है, थोड़े टाइम बाद जब आम मसई से अच्छे पके हुए आएंगे, अभी खट्टे होंगे, अभी ये होगा. तो बिल्कुल ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जब वो नई नई आ रही होती ना तो उस वक्त हम उसे नहीं ट्राई कर रहे होते, कह रहे होते हैं अभी थोड़ा सा टाइम आने दो. और मुझे याद है बिल्कुल ऐसे ही होता है जब नए नए ये फल वगैरह आते हैं तो बड़े महंगे होते हैं और इसके बाद उसकी कीमतें भी थोड़ी कम होती हैं. बिकॉज शायद मैंने बताया भी था कि फालसे मुझे फालसे बहुत पसंद है और उन्हें देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो जिस वक्त आई थिंक एक डेढ़ ठेले पर ही मैंने एक हाँ वाकई में शायद एक या दो ठेलों पर देखे थे जब बिल्कुल फालसे आए थे. तो तब जब मैंने पूछा कि भाई फालसे कैसे, 2000 रुपए किलो थे उस वक्त. 2000 रुपए किलो फालसे, मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई फिर जल्द देंगे. लेकिन वो फिर क्या, वो ऑब्वियसली जब टाइम हो जाता है वो फिर वो सस्ते हो गए. अब 200-250 रुपए किलो हैं तो सोचे जरा 200-250 रुपए किलो और फिर 2000 रुपए किलो, तो ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है. अच्छा भाई इसी के साथ साथ हाँ रशीद खान ने ये भी कहा कि आप अपने चाय का रूटीन बताएं. बिल्कुल हम आपको अपने चाय का रूटीन बताते हैं. अच्छा चाय की जहां तक बात है, चाय मुझे भी बहुत पसंद है और मेरा चाय का पहला कप जो है वो एफएम 100 पाकिस्तान में आके मैं पीती हूं अपना चाय का पहला कप. और उसके बाद जो है वो उसके बाद मैं शाम में चाय पी लेती हूं. हाँ शाम में भी एक कप लाजमी होता है और शाम में वो कप कि ना एक्चुअली में क्रेविंग हो रही होती है कि अगर शाम में वो चाय का कप ना पिए ना तो एक फ्रेश वाइब्स नहीं आती. तो एक कप शाम में लाजमी है और एक अर्ली इन द मॉर्निंग नहीं बल्कि सॉरी मेरा शो 12 से 2 के दरमियान होता है तो मैं यहां पे आकर चाय पीती हूं. और अगर कभी जल्दी उठ गए उस वक्त गैस है तो पी ली या नहीं पी ली, लेकिन वैसे मोस्टली मेरा पहला कप यही होता है चाय का. तो 2 से 3 कप मैक्सिमम दिन में चाय जरूर मैं पीती हूं. तो ये है मेरा टी शेड्यूल जो मैंने आप लोगों से किया है शेयर. और इसी के साथ साथ मुझे लगता है कि जरा हमें मौसम पर भी बात करनी चाहिए. बहुत दिन हो गए यार हमने कोई मौसम पर बात ही नहीं की, ताजा तरीन सूरत हाल आपसे शेयर नहीं की. तो डील डन है, मौसम पर करेंगे आपसे बात. लेकिन उससे पहले एक ट्रैक हम शामिल कर लेते हैं और फिर वापस आके करते हैं मौसम पर बात.

0: यस एवरीबॉडी, सो ट्रैक के बाद हम आ चुके हैं वापस और मैंने कहा जरा भाई मौसम पर भी नजर डालते हैं कि इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल जो है वो शहरे कराची की क्या कह रही है। तो भाई इस वक्त कराची का दर्जा हरारत 35 है जबकि महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 38-40 है। मुख्तलिफ इलाकों में ये शो किया जा रहा है विच इज टू मच, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह समंदरी हवाएं चलने की वजह से मौसम का इतना बुरा हाल नहीं है जितना हम कई दिनों से एक्सपीरियंस कर रहे थे। सो दिस इज द गुड थिंग ओनली, और बस ये आसानी हम पर रहे, आई विश एंड आई होप फॉर द बेस्ट। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त अंदरून सिंध का क्या हाल है? जी हाँ, अंदरून सिंध में इस वक्त जो है वो दर्जा हरारत 49-50 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन कराची में दर्जा हरारत 35-36 डिग्री के तक के दरमियान रहने मुतवक्के है। और ये जो सूरत हाल है वो ईद उल अजहा के मौके पर पूरे पाकिस्तान भर में गर्मी की शदीद लहर मुतवक्के है 49-50। जी हाँ, ये सिर्फ कराची के लिए बात नहीं हो रही है, ये पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है। लेकिन द गुड थिंग इज दैट कि इस दौरान भी कराची का दर्जा हरारत 35-36 डिग्री के दरमियान रहने के इम्कान मौजूद हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट ऐसी ही सूरत हाल रहे। अच्छा, शायद आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले हमने सुपर एलिनो का भी जिक्र किया था, जिसकी वजह से ये भी होता है कि क्लाइमेटिक चेंज होता है ऑब्वियसली, क्योंकि मौसम बहुत ही ज्यादा तब्दील हो जाता है तो बारिशों का भी कुछ ऐसे स्केड्यूल हो जाता है, या तो बहुत ज्यादा होने लगती हैं या फिर नहीं होती हैं। तो इस वक्त मॉनसून सीजन का इंतजार करने वाले लोगों के लिए बुरी खबर यह है कि सुपर एलिनो के असरात रवा मौसम सीजन पर काफी हद तक नजर आ रहे हैं, जिसके बायस बरेसगीर में मॉनसून काफी जो है वो फीका नजर आ रहा है। मुख्तलिफ पैरामिड्स की मदद से रखा जाए, ओके जी, तो सिंध बिलखसूस कराची में मॉनसून की बारिशें मामूल से काफी कम मुतवक्के हैं। फिलहाल आने वाले दिनों में हम आपको मजीद में अपडेट करूंगी इस हवाले से, लेकिन मॉनसून की इस वक्त जो है ना वो ताजा तरीन सूरत हाल ये है कि इस दफा कराची में कम बारिशों की पेशन गोई मौजूद है बिकॉज ऑफ द सुपर एलिनो, एंड दिस इज वेरी सैड। मुझे तो बहुत अफसोस है इस खबर को सुनने के बाद कि ये वाली सूरत हाल है, लेकिन इससे ना दोनों चीजें हो सकती हैं। वैसे तो बहुत कम देखने में आ रही हैं बारिशें इस साल इस सीजन में, मॉनसून सीजन में, लेकिन ये भी हो सकता है कि अचानक से हो जाए, एकदम से मौसम जो है वो टर्न ले ले और बहुत ज्यादा तेज बारिश हो जाए। सो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वैसे बारिशें बहुत ज्यादा मुतवक्के नहीं है इस साल शहर कराची में। तो ये थी मौसम की ताज तरीन सूरत हाल। जब तक चलते हैं ब्रेक की जाने और आते हैं वापस ट्रैक के साथ।
1: It's 1:45 PM. This time check is brought to you by
2: Aasani se paise badhao with Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
3: High blood pressure se aagahi, sehatmand maashre ki buniyad. World Hypertension Week. 18 se 24 May ke darmiyan suniye malumati program FM 100 Pakistan par. Adco Group aur Pakistan Cardiac Society ke taawun se.
1: This program is brought to you by
4: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
5: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
6: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
7: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
6: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं, सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
7: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाएं,
5: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें, वेट से आगे का सोचें।
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
9: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
10: Join Fatima Khan.
9: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
10: Midday break a blast.

Yes, everybody. So I am back. और मौसम पर हमने बात करी, बारिश के हवाले से भी आपको बताया कि जी हाँ, इस दफा अब बारिश की कम होने की पेशन गोई मौजूद है. बट अगेन आई एम गोना से दिस कि सुपर एलिनो की वजह से हो भी सकता है कि बारिश जो है वो अचानक से हो जाए, कभी ज्यादा तेज हो जाए, या फिर हम इंतजार ही करते रहे. मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था कि हमारा मानसून सीजन बहुत वीक था, बारिश नहीं हुई थी, तो अल्लाह ये कमी ना एक रह ही गई थी, क्योंकि दिल तो चाह रहा होता है कि बारिश हो. हाँ, लेकिन अब यह है कि थोड़ा सा कराची वाले ना बारिश को मद्देनजर रखते हुए डरते भी हैं, ये सब सोचकर कि भाई रोडों का क्या हाल हो जाएगा, घर कब पहुंचेंगे. और जो लास्ट ईयर जो कराची में तेज तरीन बारिशें हुई हैं, उसकी वजह से लोगों को घर पहुंचने में कितनी मुश्किलात हुई थी ना, ये जैसी बारिश का जिक्र आता है ना, वो लोग वही वाली चीजें याद कर रहे होते हैं. सो होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह पाक जो है वो कराची के रोडों को जल्द अज जल्द बना दे, बिकॉज आई थिंक अब ऐसी हमारी जो एक्सरसाइज वो अब गाड़ियों में, बाइकों में हो रही है ना, जो कि हम नहीं भी कर रहे होते थे ना, तो अब वो हमारी सारी एक्सरसाइजें हो रही हैं. और बहुत सारी ऐसी रोडे हैं, एक साथ कराची के रोडों का बड़ा बुरा हाल चल रहा है, और आई होप सो कि जल्दी जल्दी बन जाएं भाई ये रोडे वोडे. मुनव्वर चौरंगी का अंडरपास की भी मैंने देखा है कि भाई डेडलाइन जो है वो 30 जून तक की है. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो भी जल्दी बन जाए. करीमाबाद में है, बहुत सारी जगहें हैं जहां पर ये रोडे जो इस वक्त हैं वो शहर कराची की खुदी हुई हैं, और सब आवाम जो है वो इंतजार करिए कि ये रोडे कब बनेंगी और कब हम इनमें बासानी सफर करेंगे. तो वाकई में अब ये चीजें तो एक ख्वाहिश ही रह गई हैं कि हम रोडों पर सीधा सीधा कब चल के जा रहे होते थे, कोई मसला नहीं होता था, कोई गड्ढा नहीं होता था. लेकिन अब तो ऐसी मेरे ख्याल से कोई चंद ही रोडें रह गई हैं शायद कराची में, एक आध रोड ऐसी है जिसमें आप सुकून से सफर कर सकते हैं. नई गाड़ियां हैं, नई बाइक हो, नए रिक्शे हो, कोई भी आपका नया व्हीकल हो, वो इन रोडों में आकर बर्बाद हो जाता है. तो अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि जल्द अज जल्द शहर कराची की रोडें जो हैं वो बन जाएं. और ये भी वो दुआ है जो हम रोजाना की बुनियाद पे कर रहे होते हैं. सो बस अल्लाह पाक इस दुआ को जल्दी कबूल कर ले, आमीन. जब तक हम चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट की जानिब, क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है.

0: FM 100's time check. It's 2 p.m. This program is brought to you by
1: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
2: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
3: तुम कभी ना झुके मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
4: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
5: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
2: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
0: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।
6: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है।
7: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है।
6: घर के अफराद और आमदन में तवाज़ुन
8: हमारी जिम्मेदारी है।
9: खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
10: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान
11: Number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio with your very own RJ Jasmine.

Hello, hello, hello everyone and assalamu alaikum to all of you. You guys are tuned into FM 100 Pakistan and aap sun rahe hain Jee Neena Radio. FM 100 Pakistan pe aur aap logo batate chale ki aaj jo hai wo Thursday hai 21st of May 2026 and aap sun rahe hain hamara show jiska naam hai Jee Neena Radio. Aap logo batate chale, although sabko pata hi hai ki ye request show hai to aap log request kar sakte hain for your favorite tracks. जिसके लिए तरीकेकार बहुत ही आसान है. जस्ट टाइप के एच आई देन लीव स्पेस आपका मैसेज आपका नाम एंड देन आपकी रिक्वेस्ट और उसे 3636 पर भेज देना है या फिर facebook.com/rj.jasmine पे आप जाएंगे. वहां पे आप इनबॉक्स में अपना मैसेज करेंगे और जो भी आपने गाना सुनना है आप हमें बता सकते हैं वहां पे भी मैसेज करके. So meanwhile, we are moving on towards the first track of the show and without wasting any time, jaldi se is gaane ki taraf jaate hain. This is going to be the track called Pia Pia Calling. Milte hain is gaane ke baad.

0: Genie. Genie in radio. Radio.
1: जी जनाब, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान एंड हमारे पास जो है वो मैसेजेस भी आना शुरू हो गए हैं 3636 पर, और पेज पर भी हमारे पास कमेंट्स जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं. तो आप लोग बिल्कुल हमें मैसेजेस कर रहे हैं 3636 पर एंड फेसबुक पर भी कमेंट्स कर रहे हैं. हमारे पास निदा का मैसेज आया है. वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं निदा, आप कैसी हैं? एंड शी हैज रिक्वेस्टेड फॉर द सॉन्ग कॉल्ड दिल बेचारा. ठीक हो गया है, जरूर प्ले कर देंगे आपके लिए. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. एंड वीव कर अ मैसेज हियर फ्रॉम जयपाल. हेलो आरजे, हाय जयपाल, हाउ आर यू? एंड एनी खालिद का उन्होंने कहा है सॉन्ग, ठीक है, अगर मुझे ये वाला नहीं मिलता तो मैं एनी खालिद का कोई अच्छा सा ट्रैक आपके लिए प्ले कर दूंगी. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. एंड साबिर भट्टी ने हमें मैसेज किया है, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, सदा मुस्कुराती रहें, थैंक यू सो मच. एंड ऑलराइट साबिर भट्टी, मैं आपका ये सॉन्ग देख लेती हूँ, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का. इसी के साथ साथ फिजा ने हमें मैसेज किया है, वालेकुम अस्सलाम फिजा, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं, आप बताइए आप कैसी हैं? एंड मान सॉन्ग के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया है. ठीक हो गया जनाब, जरूर प्ले कर देंगे. मीनवाइल निदा की रिक्वेस्ट की तरफ हम जा रहे हैं. दिस इज गोइंग टू बी द ट्रैक कॉल्ड दिल बेचारा. मिलते हैं इस गाने के बाद, हमारे साथ रहिएगा, मैसेजेस करते रहिए 3636 पर. दिस इज गोइंग टू बी द ट्रैक कॉल्ड दिल बेचारा. मिलते हैं इस गाने के बाद.

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Schwabe Single Remedies तैयार की जाती हैं 100% ऑर्गेनिक अज्जा से, जो मसनूई खाद और पेस्टिसाइड से बिल्कुल पाक है, जिसे निखारा है जर्मन साइंस ने। Schwabe Single Remedies जर्मनी और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, 75 सालों से आपका एतमाद।
2: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
3: अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा।

0: तभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा।
1: हमारे माशरे में जिनसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं। लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है, तहफ्फुज हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: This program is brought to you by
5: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
6: Gali mohallon mein safai ka khaas khayal rakhein, kahin par pani khada na hone dein, dengue janleva marz hai, ilaaj se behtar ehtiyat hai. This public service message is brought to you by FM 100.
7: FM 100 like us on facebook.com/fm247365
8: fm247365 your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio. With your very own RJ, Jasmine. Genie in a radio.

0: Radio.
1: Alrighty, now welcome back. So, आप सुन रहे हैं FM 100 Pakistan and आप लोगों को बताते चलें कि आप लोग बिल्कुल हमें messages कर रहे हैं 3636 पर and page पर भी आप लोगों के messages आ रहे हैं. हमारे पास समी शेख का भी मैसेज आया है पेज पे और मेरी जिंदगी है तू इसका OST नो रिक्वेस्ट किया है. चले हम डेफिनेटली प्ले कर देंगे. एंड लुक वर्ल्ड यानी शनीला ने हमें मैसेज किया है पेज पे. कैसी हैं आप लुक वर्ल्ड? आई होप दैट सब कुछ खैरियत से होगा आपकी तरफ भी. अस्सलाम वालेकुम आरजे जैस्मिन. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. प्लीज प्ले द ट्रैक ब्लॉकबस्टर. ओके, डन हो गया. जरूर प्ले कर देंगे आपके लिए. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. एंड जस्ट थोड़ा सा सब्र रखना है गाने के लिए. हमारी कोशिश यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग की रिक्वेस्ट जो है हम इंक्लूड करें और टाइमली इंक्लूड करें. सो मीन

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो।
3: नई स्कीम,
4: कमिटी,
2: प्लाट बनाए फरो।
4: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: Like us on facebook.com/fm247365
6: fm247365. We believe in that radio speaks. FM 100, 24 hours live radio station.
7: Your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio with your very own RJ Jasmine.

0: It's 3:45 PM. This time check is brought to you by
1: Aasani se paise badhao with Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे. जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे.
0: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का. बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है. अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं. इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं. वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं. वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है. बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है. पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें. www.pta.gov.pk. मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
3: 100 FM.
4: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure. But as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
3: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
5: Legend always alive.

ओके जनाब, वेलकम बैक। लाइबा का मैसेज आया हमारे पास, वालेकुम अस्सलाम। लाइबा बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और शो की टाइमिंग्स यार वेनसडे एंड थर्सडे है 2 से 4। एंड सॉन्ग ने कहा है कि फाखर का कोई अच्छा सा सॉन्ग जो है वो प्ले कर दीजिएगा। ठीक हो गया, जरूर प्ले कर देंगे आपके लिए लाइबा। थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज। एंड हमारे पास शाहजी का मैसेज आया था, तो उन्होंने होना था प्यार रिक्वेस्ट किया था आतिफ असलम का। सो दिस सॉन्ग इज फॉर यू। मिलते हैं इस गाने के बाद क्योंकि टाइम कम है हमारे पास।

0: Genie in radio.
1: जी जनाब, वेलकम बैक. सो आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान एंड द शो इज कॉल्ड जीनी ना रेडियो. सो अब आपको बताते चलें कि शो का टाइम जो है वो खत्म हो रहा है. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीक. सुना नहीं भूलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड वेरी हैप्पी ईद मुबारक इन एडवांस, क्योंकि नेक्स्ट वीक बकरा ईद है. सो अच्छे से सेलिब्रेट करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. facebook.com/orchid.jasmin पे आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, कोई भी टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. दिस हैज बीन मी जैस्मिन, आई एम सेइंग गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.

0: FM 100's time check. It's 4 p.m.
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे. जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का.
3: Like us on facebook.com/fm247365.
4: FM247365. FM 100.
5: 31 साल FM 100. आपकी आवाज. Assalamu alaikum Pakistan.
4: Assalamu alaikum Pakistan. Pakistan.

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: रास्त।
3: रास्त।
4: आज मंडी में बकरे और गाय आपसे कह रहे हैं कुछ अलग बात कि कुर्बानी के जानवरों की पेमेंट होगी बराह रास्त। तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड स्कैन करें और पेमेंट करें हाथ के हाथ बराह रास्त।
5: तुम कभी ना झुके मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
6: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease.
7: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
2: रास्त।
3: रास्त।
4: आज मंडी में बकरे और गाय आपसे कह रहे हैं कुछ अलग बात कि कुर्बानी के जानवरों की पेमेंट होगी बराह रास्त। तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड स्कैन करें और पेमेंट करें हाथ के हाथ बराह रास्त।
8: FM 100 like us on facebook.com/fm247365
9: 247365। डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
10: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: It's 4:45 PM. This time check is brought to you by
1: Aasani se paise badhao with Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
2: डेंगी एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगी का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। Like us on facebook.com/fm247365
3: fm247365. In the rhythm of life, rhythm of when you life. Feel out of tune, then tune into fm 111 100. The music plays on.

0: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
1: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
2: तुम कभी ना झुके, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
3: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
4: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
1: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
6: इज्तिमाई कुर्बानी, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल
5: एंड हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओ।
7: मैकल हबीब, रिश्ता भरोसे का। एंड
8: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
9: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
4: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
10: एंड पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराह रास्त।
4: एंड डेटॉल फूल से ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
11: एंड AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
12: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशत गर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशत गर्दों की माली मुआवनत भी दहशत गर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
13: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
14: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
15: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: कुर्बानी का गोश्त सफेद पोश खानदानों के लिए और खाले तालीम सेहत गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330153153 4 और 5।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: इज्तिमाई कुर्बानी, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल
3: एंड हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओ।
4: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का। एंड
5: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले।
6: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
7: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफाद आमा के लिए वजारत इत्तिलात नशियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिल सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीमाबाद,
4: बल्तिस्तान, अहमदाबाद, गुजरात,
3: अक्रॉस द नेशन,
4: दिस इज FM 100, FM 100, 100, 100, 100, 100.
5: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें।

0: अपने कमाल बैकअप से AGS ट्यूबलेस दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेस बैटरी, दिल को है आराम।
1: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: कुर्बानी का गोश्त सफेदपोश खानदानों के लिए और खाले तालीम, सेहत, गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330153153 4 और 5।
4: शिफा वहाँ से शुरू होती है जहाँ कुदरत मुस्कुराती है। श्वाबे सिंगल रेमेडीज, कुदरत के अनमोल खजानों और जर्मन महारत का शाहकार, जिन्हें आप तक 75 सालों से पाकिस्तान में पहुँचा रहे हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो।
5: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं प्रोफेसर महमूदुल हसन बात कर रहा हूँ। मैं एक्स प्रेसिडेंट पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी रह चुका हूँ। ब्लड प्रेशर एक खामोश कातिल है, इसलिए इसकी बरवक्त तशखीस और दवा का बाकायदा इस्तेमाल आपको मुख्तलिफ पेचीदगियों जैसे फालज, हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर और आंख की बिनाई जाया होने से बचा सकता है। इसलिए आपको बाकायदा दवा का इस्तेमाल, वर्जिश, नमक और चिकनाई से मुकम्मल परहेज करना।
6: ये पैगाम पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी और एडको लेबोरेटरीज पाकिस्तान के तावन से नशर किया गया है।
3: कुर्बानी का गोश्त सफेदपोश खानदानों के लिए और खाले तालीम, सेहत, गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330153153 4 और 5।

0: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
1: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
2: तुम कभी ना झुकी, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
3: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease.
4: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
5: रास्त
6: रास्त।
7: आज मंडी में बकरे और गाय आपसे कह रहे हैं कुछ अलग बात कि कुर्बानी के जानवरों की पेमेंट होगी बराए रास्त। तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड स्कैन करें और पेमेंट करें हाथ के हाथ बराह रास्त।
1: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
8: This program is brought to you by
9: Ijtimai Qurbani, Alamgir Welfare Trust International
8: and Har Remittance Par Shandar Inamat Jeetne Ka Mauka Paao.
10: Bank Al Habib, Rishta Bharose Ka.
11: And agar aap hain in-drive car, bike ya rickshaw driver, to 4 mai se 12 julai tak weekly challenges mein hissa le.
10: And
12: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
10: And
4: live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
7: And payment usool kare haath ke haath बराह रास्त।
10: एंड
13: डेटॉल फूल सोप, ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
10: एंड
14: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
15: FM 100, लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM 247 365।
16: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
15: It's 5:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
12: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
0: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath full premium feel. Aur price सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
17: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
18: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अल हबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अल हबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
10: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
19: कुर्बानी का गोश्त सफेदपोश खानदानों के लिए और खाले तालीम, सेहत, गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330 153 153 4 और 5।
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پروفیسر محمود الحسن بات کر رہا ہوں. میں ایکس پریزیڈنٹ پاکستان کارڈیک سوسائٹی رہ چکا ہوں. بلڈ پریشر ایک خاموش قاتل ہے, اس لیے اس کی بروقت تشخیص اور دوا کا باقاعدہ استعمال آپ کو مختلف پیچیدگیوں جیسے فالج ہارٹ فیلئر, رینل فیلئر اور آنکھ کی بینائی ضائع ہونے سے بچا سکتا ہے. اس لیے آپ کو باقاعدہ دوا کا استعمال, ورزش, نمک اور چکنائی سے مکمل پرہیز کرنا.
6: یہ پیغام پاکستان کارک سوسائٹی اور ایڈکو لیبورٹریز پاکستان کے تعاون سے نشر کیا گیا ہے.
20: ٹریڈنگ ٹرسٹ می برو,
21: نئی اسکیم,
22: کمیٹی,
23: پلاٹ برائے فروخت,
24: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو. اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ. آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
19: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالے تعلیم, صحت, غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330153153 4 اور 5.

0: कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरे खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: कुर्बानी का गोश्त सफेद पोश खानदानों के लिए और खाले तालीम सेहत गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330153153 4 और 5।
0: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरे खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
2: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई ना होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: इज्तिमाई कुर्बानी, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल
4: एंड हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओ।
5: बैंक हबीब, रिश्ता भरोसे का। एंड
6: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
7: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
5: एंड
8: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
5: एंड
9: पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराह रास्त।
5: एंड
10: डेटॉल फिल्टर, ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
5: एंड
11: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
12: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
13: हमने आप ना कुछ 3 बार मौत देखे
14: टाइम से मनु ऐसे ही के मैं हूँ कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
15: फिर उन्होंने साड़ी वीडियो बनाई, सानू मारिया, सानू कुटिया।
12: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
16: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
12: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाब के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क्याम, मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
17: FM 24/7/365

0: किसी चीज की सजा है।
1: It's 6 PM. This time check is brought to you by
2: AGS Tubular. दिखाए काम AGS Tubular Battery. दिल को है आराम।
3: हेलो, गेस व्हाट? हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें।
4: कुर्बानी का गोश्त सफेद पोश खानदानों के लिए और खाले तालीम सेहत गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330-153-153-4 और 5।
5: शोबे सिंगल रेमेडीज तैयार की जाती है 100% ऑर्गेनिक अड्डा से, जो मसनूई खाद और पेस्टिसाइड से बिल्कुल पाक है, जिसे निखारा है जर्मन साइंस ने। शोबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, 75 सालों से आपका एतमाद।
6: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं प्रोफेसर महमूद अल हसन बात कर रहा हूँ। मैं एक्स प्रेजिडेंट पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी रह चुका हूँ। ब्लड प्रेशर एक खामोश कातिल है, इसलिए इसकी बरवक्त तशखीस और दवा का बाकायदा इस्तेमाल आपको मुख्तलिफ पेचीदगियों जैसे फालज, हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर और आंख की बिनाई जाया होने से बचा सकता है। इसलिए आपको बाकायदा दवा का इस्तेमाल, वर्जिश, नमक और चिकनाई से मुकम्मल परहेज करना।
7: ये पैगाम पाकिस्तान कारिक सोसाइटी और एडको लेबोरेटरीज पाकिस्तान के तावन से नशर किया गया है।
4: कुर्बानी का गोश्त सफेद पोश खानदानों के लिए और खाले तालीम सेहत गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330-153-153-4 और 5।

0: तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: इज्तिमाई कुर्बानी, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल
3: एंड हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओ।
4: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: एंड अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
6: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
4: एंड
7: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
4: एंड
8: पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराह रास्त।
4: एंड
9: डेटॉल फिल्टर, ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
4: एंड
10: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, AGS ट्यूबलेट बैटरी दिल को है आराम।
11: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म की जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
12: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
13: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है।
14: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है।
15: घर के अफराद और आमदन में तवाज़ुन
16: हमारी जिम्मेदारी है।
17: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
12: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
1: Like us on facebook.com/fm247365
18: fm247365
19: fm100
20: 31 saal fm100 aapki awaaz. Assalamu alaikum pakistan,
21: assalamu alaikum pakistan.

0: तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय इज्तिमाई
2: कुर्बानी, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल
3: एंड हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओ।
4: बैंक हबीब, रिश्ता भरोसे का। एंड
5: अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
6: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
4: एंड
7: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
4: एंड
8: पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराह रास्त।
4: एंड
9: डेटॉल फूल से ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
4: एंड
10: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
11: Like us on Facebook.com/FM2.

like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 6:30 PM. This time check is brought to you by
1: Dettol Facial. ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए.
2: Hello, guess what? Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition और वो भी upgraded features जैसे push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims और sunroof के साथ full premium feel. और price? सिर्फ 64,49,000. Pre-booking is open now, so जल्दी करें और अभी अपनी nearest Hyundai dealership visit करें.

0: पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: कुर्बानी का गोश्त सफेदपोश खानदानों के लिए और खाले तालीम सेहत गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330153153 4 और 5।
2: कुदरती अज्जा इंतहाई नाजुक होते हैं, इसीलिए श्वाबे जर्मनी दुनिया का जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस्तेमाल करता है ताकि अज्जा का खालिसपन महफूज रहे और तासीर में इजाफा हो। श्वाबे सिंगल रेमेडीज, जर्मन इनोवेशन और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, जिस पर है पाकिस्तान का 75 साल एतमाद।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं प्रोफेसर महमूद अल हसन बात कर रहा हूँ। मैं एक्स प्रेसिडेंट पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी रह चुका हूँ। ब्लड प्रेशर एक खामोश कातिल है, इसलिए इसकी बरवक्त तशखीस और दवा का बाकायदा इस्तेमाल आपको मुख्तलिफ पेचीदगियों जैसे फालज हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर और आंख की बिनाई जाया होने से बचा सकता है। इसलिए आपको बाकायदा दवा का इस्तेमाल, वर्जिश, नमक और चिकनाई से मुकम्मल परहेज करना।
4: ये पैगाम पाकिस्तान कारिक सोसाइटी और एडको लेबोरेटरीज पाकिस्तान के तावन से नशर किया गया है।
1: कुर्बानी का गोश्त सफेदपोश खानदानों के लिए और खाले तालीम सेहत गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330153153 4 और 5।

0: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: ट्रेडिंग ट्रस्ट मी ब्रो,
2: नई स्कीम
3: कमिटी
4: प्लाट बनाए फरो,
5: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो। इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
7: कुर्बानी का गोश्त सफेद पोश खानदानों के लिए, और खाले तालीम सेहत गरीब बच्चियों की शादी के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए 0330153153 4 और 5।
6: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
8: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें।

0: मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंट्रासिव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है। ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।

0: मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: इज्तिमाई कुर्बानी, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल
1: एंड हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओ।
3: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
5: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
6: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
7: एंड पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराह रास्त।
6: एंड डेटॉल फिल्टर, ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
8: एंड AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
9: 100 FM.
10: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
11: Ye paigham hukumat-e-Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.

0: तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज़ इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।

0: It's 7:30 PM. This time check is brought to you by
1: Dettol Creature. ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए.
2: शिफा वहाँ से शुरू होती है जहाँ कुदरत मुस्कुराती है. श्वाबे सिंगल रेमेडीज, कुदरत के अनमोल खजानों और जर्मन महारत का शाहकार, जिन्हें आप तक 75 सालों से पाकिस्तान में पहुँचा रहे हैं. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो,

0: तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैस कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैस कैश है ना।
1: नशा न परेशानियाँ खत्म करता है, इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
2: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: तोहीन रिसालत, नफरत आमेज तकरीर और मजहबी फिरका वारियत का फरोग आईन पाकिस्तान के मुताबिक एक इंतहाई संगीन जुर्म है। सोशल मीडिया जैसा कि यूट्यूब, ट्विटर या केबल FM पर इस नौयत का गैर कानूनी मवाद नजर में आए तो FIA, साइबर क्राइम विंग, PTA या पेमरा को फौरी इतला करें। जिम्मेदार शहरी बने, मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें। मुफाद आमा का ये पैगाम आपको पेमरा की जानिब से पेश किया जा रहा है।
4: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja.
1: Phoenix laga aur bhul ja. हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
2: ट्रेडिंग ट्रस्ट मी ब्रो
3: नई स्कीम
4: कमिटी
5: कार्ड बनाए फरो
6: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
1: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
7: Ek duni do do duni chaar sahi intikhab ke inamat dhai hazaar.
8: Agar aap hain drive car, bike ya rickshaw driver to 4 mai se 12 julai tak weekly challenges mein hissa le. Platinum status maintain kare aur pay fair earnings ke saath 2,500 se zyada inamat.
7: Ek duni do do duni chaar.
9: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन टीएनसीज को तस्लीम करना है
10: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना

0: तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरे खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फाहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफादे आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 24/7 365।
5: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
6: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाए।
5: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वॉक नहीं करता।
7: मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
8: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
5: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम नहीं।
7: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
8: सिर्फ बातें बनाने से हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते।
7: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाएं,
5: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें
8: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
5: आइए वेट से आगे का सोचें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
1: नई स्कीम,
2: कमिटी,
3: लाड बनाए फरो।
4: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।

0: तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: FM 24/7 365. This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے، ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. Traffic قوانین کی پابندی کیجیے.

तेरी धुआंधार परफॉर्मेंस वाला हला जवाब तुझे देख खुश हुए सारे शेख और नवाब स्टैंडिंग ओवेशन देख कहते हैं तुझे अलू खान अल शेख लत।

0: FM 100's time check. It's 9 p.m.
1: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
2: 100 FM।
1: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
0: This program is brought to you by
3: Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition और वो भी upgraded features।
4: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन एप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है।
7: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है।
8: घर के अफराद और आमदन में तवाज़ुन
9: हमारी जिम्मेदारी है।
10: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: FM 100 Like us on Facebook.

0: Pakistan.
1: 5, 4, 3, 2, 1.

my check 1 2 3. Assalamu alaikum and assalamu alaikum Pakistan. Sabhi sunne walon ko Ayaz Ahmed ki janib se adab. Kaisi tabiyat hai aur kaise mizaj hai? Ummeed karta hu maze mein honge, theek thaak honge aur fit fat honge. Enjoy kar rahe hain FM 100 ko. Drive kar rahe hain itminan sukoon ke saath. जनाब ईद की भी अब बातें होनी चाहिए. दिन देखते देखते काफी करीब आ गए और रोडों पे एक अजीब रश, रौनक, गहमा गहमी ये नजर आ रही है आपको. अच्छा जनाब, और जानवरों की कीमत हमेशा जैसा कि लोग कह रहे थे बहुत महंगे, ये वो, हर साल यही एक बात सुनने को मिलती है, कब सस्ते होंगे. ये बातें भी होती रहेंगी साथ साथ. आप लोगों के मैसेजेस पहुंचते हैं कि एचआर स्पेस, टेक्स्ट करते हैं क्यूट सा प्यारा सा और सेंड कर देते हैं 3636. फ्राइडे और फ्राइडे वाले दिन जो है ट्यूशीट आज मैंने बनाई हुई है, बस इत्मीनान से आप लोगों ने गाने सुनने. और जनाब डेडिकेशन, बिल्कुल मोस्ट वेलकम डेडिकेशन आप कर सकते हैं, गर्मी के हवाले से बात कर सकते हैं. शिकवन जी पीपी के हमारा हाल अजीब हो गया. इसके अलावा और जो आपका दिल करे. अच्छा जनाब, आगाज करेंगे जुनून के इस खूबसूरत ट्रैक से.

0: में जनाब सुन रहे हैं FM 100.7 मैसेजेस आपके पहुंच रहे हैं 3636 पर। बिलावल भाई गिजरी से, आज भाई आपको संबल जी को सलाम, एफएम मंडल की तमाम लिसनर्स को भी अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप और क्या हाल है? हाल तो बिल्कुल ठीक है, स्टूडियो में जब आते हैं तो बेहतरीन हाल हो जाते हैं। लेकिन इस्लामाबाद से मैसेज आ गया महाजबीन का, महाजबीन कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। और तबीयत अब काफी बेहतर होगी इनकी, चलो शुक्र है, ये अच्छी बात हो गई है। बस गर्मी ने जो है ना बुरा हाल किया हुआ है। अच्छा जी, इस्लामाबाद में भी गर्मी का जो हाल है वो जबरदस्त है। चले जनाब कोई बात नहीं, गर्मी तो अब ये तो मौसम है ही, जून जुलाई का गर्मी का कुछ भी कर लें आप, गर्मी तो होनी है। फरहीन शहजादी आ गई है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत है? तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम, वालेकुम अस्सलाम। माँ जमीन को गाना पसंद आ गया, चले आज क्यू शीट आपने गौर से सुनी है, दिल से मेहनत से और प्यार से बनाई हुई हमेशा की तरह। अच्छा जी, मिसेस फारूक वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, इतनी दुआएं लिख दी आपने, क्या कहने। काशिफ भाई मेरे ख्याल से सुन, काशिफ कैसे है मेरे भाई, मैं बस फ्री होते ही आपको जो है फोन करता हूँ। संजीदा वालेकुम अस्सलाम, कहाँ मसरूफ है भाई, मेहमान लगता है आए हुए इनके। और बहरहाल आपने वेलकम कह दिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, और इसके अलावा एस भट्टी भी आ गए हैं और कह रहे हैं आपका शो सुन रहा हूँ यार, बड़ी मेहरबानी सर। गाना वैसे मैंने वो याद रखा हुआ है, एक ना एक दिन मैंने प्ले करना है। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, नदीम भाई जरा पहाड़ों की कसम, कसम है आपको, भट्टी भाई क्या याद करेंगे। भाई जनाब, और अब जरा नेक्स्ट ट्रैक की जाने फिर बढ़ते हैं, और अब कौन सा गाना, लेकिन दो मिनट रुके सर, होल्ड करें आप, टाइम चेक है, और उसके बाद 3 मिनट की ब्रेक भी मुझे नजर आ रही है। तो दोस्तों 3 मिनट है आपके पास, अच्छी बातें सोच के रखें, मैसेज करें और जरा गपशप करें कि आज क्या बात करनी है। इसमें महंगाई का कोई जिक्र नहीं होना, क्योंकि मैं कान पक गए महंगाई का जिक्र, पेट्रोल का जिक्र, ये कोई फायदा नहीं है इनका, अपनी बातें शेयर करें कोई अच्छी। तो राइट जनाब, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: It's 9:15 PM. This time check is brought to you by
2: आसानी से पैसे बढ़ाओ with Easy Paisa Digital Bank. Easy वाला बैंक।
3: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: This program is brought to you by
4: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
5: Ek ladki jab padhegi to apne pairon par khadi hogi. Ek ladki jab padhegi to khud mukhtar banegi. Ek samajhdar maa banegi. Sirf apni hi nahi balki sare gharane ki zindagi badlegi. Aane wali naslein sawaregi. Ek ladki jab padhegi to mulk ko mazboot banayegi. पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
1: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
6: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے، جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے، کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
7: لائک اس آن
8: FM 24/7 365
9: پیاز تو سنو یاد۔

जी वेलकम बैक। सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस भी पहुंच रहे हैं। क्या चॉइस पे टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 3636 पर। काफी सारे मैसेज जमा हो गए, बिल्कुल मैंने शामिल करने, लेकिन एक ब्रांड न्यू गाना भाई मुझे नजर आ गया और मैंने क्यू शीट में शामिल कर लिया, और ये है अली हैदर और इनका ये ट्रैक दिल नहीं लगता। जरा डिफरेंट स्टाइल में एंजॉय करें और फिर मजीद मैसेजेस और आपके फेवरेट ट्रैक्स।

0: Friday, it's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: वेलकम बैक सुन रहे एफएम 100 और साथ साथ मैसेजेस पहुंच रहे हैं 3636 पर. अलियास नैन आ गए कराची भाई. अलियास नैन कैसे हो मेरे भाई? और मुझसे पूछ रहे मैं तो बिल्कुल ठीक. दुआएं चाहिए आपकी और आपकी सारी टीम को. आदाब खैर आदाब जनाब. और जनाब यूके से हमें सुन रही है नादिया मलिक. नादिया कैसी हो तुम? और ये इस टाइम पे वो खाना भी बना रही होती है, साथ साथ हमारा शो भी सुन रही होती. मजे हैं तुम्हारे यूके में. बेहतरीन टाइम होता है इस वक्त शाम का, असर का टाइम होता है और आराम से डिनर की भी तैयारी हो रही होती है और साथ साथ किचन देखना, गाने मिला ध्यान हो जाए और खाना ऐसा वैसा बन जाए, उस पर तवज्जो रखनी खाने पे. बिलावल गिजरी से सर, डिफेंस में तो हर गली मोहल्ले में कुर्बानी के जानवर के आने से बहुत रौनक होगी. सही कह रहे हैं, मैं यहाँ एफएम 100 आता हूँ तो यहाँ भी रास्ते में ओए होए फुल माहौल बन गया ईद का और मजा आ रहा है सबको देखते हुए, अच्छा भी लग रहा है. अच्छा जी, संजीदा आ गई भाई. और संजीदा जी क्या कहने हैं, और इनको मंगल का शो जो है वो कह रहे हैं भुलाई नहीं भूल रहा. अच्छा जी, दोस्तों ने भी तारीफ की थी कि आपकी चॉइस था. अच्छा वाकई में बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का. अच्छा जनाब, इसके अलावा फैसलाबाद से नौरीन तौसीफ आ गई. नौरीन कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम सलाम, सबको सलाम दुआ कह दिया इन्होंने. फैसलाबाद का जो मौसम है वो कह रही हसीन तरीन मौसम, ठंडी ठंडी हवाएं, हल्की हल्की बारिश, लाजवाब. अच्छा जी, और कह रही बैकग्राउंड जबरदस्त है आज भाई. नौरीन जी बहुत शुक्रिया. और महाजमीन जो है, गाना बिल्कुल मैं डेडिकेट करता हूँ, थोड़ा सा इंतजार करना है आपने. और बैकग्राउंड ऑसम है. अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया. अच्छा जनाब, नेक्स्ट ट्रैक की जाने बढ़ते हैं. और यार ये कैफे खलील भाई ने भी गाने कुछ जरा दो चार नए बनाए. कहानी सुनो वाले भाई, लेकिन कहानी सुनो वाला जो है ना, जिस तरह वो हिट हो गया था, वो हिट होना भी नसीब की बात है. बेचारा वो मेहनत बहुत कर रहे हैं और गाने अच्छी भी बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है. लेकिन जो कहानी सुनो जो हिट हुआ है ना, देखते हैं कि ये ट्रैक हिट होता है कि नहीं होता.

0: पर्वा जी संजीता कह रही है कि भाई म्यूजिक अच्छा है, हिट होने का चांस है इसका। चले ठीक हो गया जनाब, इनकी तरफ से तो ओके की रिपोर्ट है। और बिलावल गिजी से, सर महजमीन की तबीयत कैसी है? महजमीन अब काफी बेहतर है, महजमीन जरा डिटेल बताएं तबीयत कैसी है आपकी। अच्छा जी, और नादिया मलिक कह रही है भाई संजीदा जी को, रुबाब को, मिसेस फारूक को सलाम दुआ, बाकी सब लोगों को भी भाई। अच्छा जनाब, और फरहीन क्या कह रही है? फरहीन कह रही है कि प्लेलिस्ट शानदार हो गई है। चलें जनाब ठीक हो गया, बस अब आपने गाने सुनते रहना है और मुझे बताने भी कैसे लग रहे हैं आपको। अच्छा जी, मिसेस फारूक की तरफ से नादिया मलिक आपके लिए, जीती रहो, वालेकुम अस्सलाम। और नादिया को बहुत सारा प्यार कह दें। संजीदा की तरफ से भी मैसेज आ गया भाई, नादिया जी आपको वेलकम कर दिया सबने दिल की गहराइयों से। अच्छा जनाब, कुछ सेकंड की ब्रेक यानी एक मिनट तक की ब्रेक नजर आ रही है, ये आप सुने, बस मैं यूं गया और यूं आया।
1: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
2: 100 FM।
1: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
2: This program is brought to you by
3: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
2: Like us on facebook.com/fm247365 fm247365
4: active yummy
5: adorable
4: seven. प्यास तो सुनो यार।

जनाब वेलकम बैक एफएम 100 और जरी नूर क्या कह रही है, सलाम कैसे हैं सबको, सबको सलाम और कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी मैम, हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप बताएं जरी नूर, तबीयत ठीक है, मजे में है। मिसेस वारू गाने पसंद कर रही हैं, बहुत शुक्रिया, लवली म्यूजिक। अच्छा जी, और संजीता जी का भी गाना पसंद आ गया और चाय भी पी रही है भाई, वाह वाह। जनाब कोशिश करूंगा कि गर्मी में इसी तरह की कूल सी क्यू शीट जो है वो शामिल रखें। माँ जमीन कह रही है कि इस्लामाबाद में आंधी तूफान आ गए हैं आपको सुन के। अच्छा जी, चले यार आप लोग कितने लकी हैं, जितनी मर्जी गर्मी पड़े इस्लामाबाद में, मैंने नोट की है ये बात, जितनी मर्जी 40 तक चला जाता है, 40 से भी प्लस, लेकिन अचानक जो है ना वो बादल आ जाते हैं, बारिशें शुरू हो जाती हैं और मौसम जबरदस्त। कराची में कब होगा ऐसे ठाकुर, कब होगा कराची में ऐसे। नदीम अंसारी कुछ बताओ यार, नदीम भाई भी बेचारे परेशान हो, कह रहे हैं क्या करें गर्मी का कोई हल नहीं है। अच्छा इसके अलावा तबीयत मेडिसिन चल रही है बिल्कुल ठीक और सबकी दुआओं का शुक्रिया। चले जनाब माँ जमीन की तरफ से सबको शुक्रिया। अच्छा जनाब, तो सॉन्ग्स जो है कोशिश कर रहा हूँ जरा इसी तरह से मजे के आपको सुनाता रहूं। अच्छा भाई, बनी भाई का एक ट्रैक शामिल करते हैं और माँ जमीन आपको डेडिकेट कर देते हैं, और वो है कैसे। चलें जनाब, और मैसेज करेंगे 3636 पर।

भाई क्या बात है बनी भाई की भी जबरदस्त ट्रैक, हालांकि करोड़ों साल पुराना है लेकिन जब सुने आपको अच्छा लगता है और इसका इजहार कर भी दिया है वदूद साहब ने। अब्दुल वदूद साहब कह रहे हैं ये सॉन्ग लगाया। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अब्दुल वदूद फ्रॉम क्लिफ्टन सर। कैसे हैं वदूद साहब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपका नाम सुन के ना मुझे अब्दुल वदूद का सोन हलवा याद आ गया, मुल्तान में बड़ा फेमस है। अब तो खैर और भी बहुत सारे हो गए हैं, तो सर खुश रहे, थैंक यू वेरी मच, गाना पसंद करने का शुक्रिया। उम्मे रुबाब अयाज सलाम, आपको सुनने वालों को सलाम, और आप कैसे हैं? संजो नसरीन पटेल को सलाम। हाय नसरीन पटेल, मिसेस फारूक, मजे आ रहे हैं दो दो नाम सुन के। कुछ लोग कह रहे हैं भाई तूफान हमें दे दो, नहीं तूफान अपने पास रखो, बारिश हमें दे दो। सही कह रही संजीदा, बिल्कुल सही। वैसे तूफान और आंधी एक ही चीज है, दोनों ही मैं तो कहता हूं अपने पास रखें, बारिश हमें दे दे चुपचाप। अच्छा जनाब, और इसके अलावा फरहीन कहनी कराची में गर्मी की वजह से इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, ये बात तो सही किया, ये बात आपने सही की। अच्छा जनाब, अब जरा नेक्स्ट ट्रैक की जाने तो थोड़ा सा जरा माहौल जरा सा डिफरेंट करते हैं, और ये ट्रैक मुझे बड़े दिनों बाद नजर आया और मैंने क्यू शीट में शामिल किया है। टेक मी होम, क्या जबरदस्त ट्रैक, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पुराना ट्रैक है लेकिन जरा नए स्टाइल से।

0: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरे खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
0: 100 FM।
2: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरे खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
0: This program is brought to you by
3: Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition और वो भी upgraded features।
4: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: facebook.com/fm247365 fm247365
7: active yummy
8: adorable
7: zabardast
8: ye pyaas to suno yaar

हाय जनाब, वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ इतने प्यार से मोहब्बत से मैसेज कर रहे हैं नादिया जी, बहुत शुक्रिया। ये दूसरी नादिया की, वो नादिया मलिक है, ये नादिया सिर्फ खाली नादिया ही 3636 पर यहाँ पे इनका मैसेज आ गया। अच्छा जा, एंजॉय द बेस्ट बैकग्राउंड, गुड है। अच्छा जनाब, कौन है भाई? नाम तो लिखा करें यार, नाम लिखा करो पहले, उसके बाद मैसेज किया करें। अली हसनैन फिर कराची से मैसेज कर रहे हैं, कुर्बानी करते वक्त एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को जिबान नहीं करना चाहिए, वो बेजबान होते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरह। अरे बिल्कुल सही बात की भैया आपने। और अली अनवर भाई, एक बात मुझे याद आ गई, एक एमपी है, पता नहीं क्या है, मिनिस्टर मिनिस्टर है वो, आमना शेख के नाम से, यार उनका स्टेटमेंट पढ़ के मुझे वाकई बहुत अफसोस भी हुआ और ये भी हुआ कि जो बात कही जाती है कि एक तो पढ़े लिखे नहीं और दूसरा कोशिश भी नहीं करते, ये बिल्कुल परफेक्ट बात हो गई इनके ऊपर। मोहतरमा कह रही है, एक तो इमरान खान के बारे में कह रही है, एक तो सबसे पहले ये मिथ खत्म करें, इमरान खान ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, इसने ऑक्सफोर्ड से सिर्फ बैचलर्स किया है। दसो क्या बात है यार, मैं शादीशुदा नहीं हूं लेकिन मेरा निकाह हुआ हुआ, ये तो वो वाली इस तरह वाली बात हो जाती है। कुछ नहीं हो सकता, ये लोग अब मुल्क के फैसले करेंगे, ये मुझे सोच के थोड़ी तशवीश हो रही है कि इनका क्या होगा यार। वैसे अब मुकाबला नहीं, मैं कहता हूं इस तरह की नौबत आ जाए तो मुकाबला छोड़ दें, स्टेटमेंट देना छोड़ दें इस तरह की। अच्छा जनाब, और फिरोजा आ गई, फिरोजा की हाल है तुम्हारा, आपको पता है क्या कहनी है? फिरोजा हूँ, आपको पता है आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो अयाज अहमद है। फिरोजा जी, आपको नया रख रही है तो मुझे बताएं, कोई भी सॉन्ग संजीदा को मेरे नाम से डेडिकेट कर दें। ठीक हो गया जरीनूर, बिल्कुल डेडिकेट कर देता हूँ। अच्छा जनाब, कहनी बारिश को अभी हमें भी, अभी बारिश हमें भी मौसर नहीं। अच्छा जी, माजमीन इस्लामाबाद से मैसेज करते हुए कह रही है धूल मिट्टी से ही गुजारा करना पड़ रहा है। नहीं नहीं, धूल मिट्टी से मुझे तो बहुत एलर्जी है, जितना धूल मट्टी से दूर रहे अच्छी बात है। सलाम अयाज, वालेकुम सलाम। हुमा जी क्या हाल है आपके? बड़े दिनों बाद आपका मैसेज भाई। अच्छा जनाब, और इंग्लिश गाना भी पसंद आ रहा है, बनी का भी गाना मेरे ख्याल से इनको पसंद आ गया अयाज। अच्छा ये जो आप गाने लिख रही है यार, ये वैसे नो डाउट अच्छे हैं। एक आपने गाना लिखा था मुझे, बड़ा वो स्लो ट्रैक है, जरा सा ऐसी बैकग्राउंड में रखता हूँ और आपको मैं डेडिकेट भी कर देता हूँ, और वो कुछ इस तरीके का है, काफी स्लो नंबर है। ये जो नए हमारे जो सुनने वाले ना, उनके लिए पता नहीं हजम हो कि नहीं हो, लेकिन क्या गाना था सीरियसली। तो बहरहाल जनाब, बैकग्राउंड में इसको रखते हैं और साथ साथ आपका मैं मैसेज भी पढ़ता रहता हूँ।

क्या बात है, क्या बात है। बस किसी को सुलाना हो तो उमा जी गाना लगा दूं, लेकिन क्लास है गाने की, मैं समझ सकता हूँ, तो बैकग्राउंड भी मैं रख लेता हूँ। और रुबाब जी आपके लिए सलाम दुआ आ गई है संजीदा की तरफ से भी, और नाराज हसीना रुबाब खुश रहे। अच्छा जनाब ये, और इसके अलावा मिसेस फारूक भी आपको सलाम कह रही है, और चाय का आलमी दिन मुबारक है वाकई में। चलें जनाब, और इनका कुछ नहीं होगा छोटी सोच, अच्छा ये उसकी बात कर रही है भाई, इनका बाकी कुछ नहीं हो सकता। तो इसको जरा मैं ऐसी, मैंने कहा मुझे आपको बता दूं कि देखो इस गाने का मुझे पता था, लेकिन मैंने इसको थोड़ी से थोड़ा सा आपके लिए मैंने प्ले कर दिया। अच्छा जनाब, नेक्स्ट ट्रैक की जानिब, मैसेजेस करें 3636 पर।

से जना सुरीली आवाज लग रही है संजीदा जी को, क्या कहने, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और साबिर भट्टी साहब क्या कह रहे हैं, प्रोग्राम वेरी नाइस। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। और बिलावल गिजरी से

हाय हाय क्या कहने भाई जनाब, क्या कहने, वॉक हो रही है भाई इस टाइम पे। और वाकई यार पिक्चर में देख रहा हूँ जबरदस्त ऐसा, वाकई वो कह रही है नादिया मलिक जनाब इस वक्त वॉक कर रही है और फुल टाइम ग्रीनरी वाले एरिया में, और कह रही है इस्लामाबाद वाला माहौल बना हुआ है फुल टाइम। और यार दुनिया कितनी तरक्की कर गई, यूके में भी होके वो हमारे कराची के प्रोग्राम सुन रही है और एंजॉय कर रही है, वाह वाह वाह वाह, मजे हैं तुम्हारे नादिया मलिक फुल टाइम मजे। मैं इसी तरह वॉक करती रहो। लेकिन जी वॉक का असर क्यों नहीं हो रहा यार, एक दिन करती हो तो 10 दिन नहीं करती, फायदा क्या है वॉक का, इसको कंटिन्यू रखना है आपने, तब जाके जो है ना फर्क पड़ेगा। अच्छा भाई इकरा कह रही थी ये वाला सॉन्ग और हमारी क्यू शीट में भी मौजूद, तो क्या ख्याल है इस गाने को हम ऑन एयर करते हैं और स्लो स्लो तुमने वॉक करना है ये गाना सुन

0: Friday, it's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: थैंक यू वेरी मच जनाब, गाने बाकी लगता है बहुत पसंद आ रहा है भाई। और कह रही भाई आपके शो की फोन कॉल अच्छी लगती थी जरी नूर। चलो कोई बात नहीं जनाब, थोड़ा सा इंतजार करें, ठीक हो जाएगा। कादिर बख्श कह रहे हैं अयाज भाई बहुत बहुत माजरा चाहता हूँ, मैसेज बिलावल के नाम से सेंड हो गया, बिलावर और संजीदा को। ठीक हो गया सर जी, मैंने कहा पहले भी उन्होंने कहा था। और अली हसनैन कह रहे हैं हसरत है तुम्हारे दीद करें, तुम आओ तो हम ईद करें। अरे वाह वाह वाह वा, क्या कोई मुख्तसर और सस्ता वाला शेर आपने जो है ना पढ़ दिया। इकरा कह रही थैंक्स, मैंने आपकी टेलीफिल्म देखी थी, ये आपका टैलेंट ही है जो आप हर तरह के रोल कर लेते हैं। अरे बड़ी मेहरबानी इकरा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जनाब, और इसके अलावा नौरीन तौसीफ बहुत शुक्रिया, कह रही भाई आज का शो कुछ नया नया सा लग रहा है अयाज भाई, बड़ी मेहरबानी। और एक सॉन्ग मैं भी बताऊं, फैज अहमद फैज का इंतजार, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार कब से है, जरूर प्ले कीजिएगा। चलिए जनाब मैं क्यू शीट में नेक्स्ट बनाऊंगा तो इस गाने को कोशिश करेंगे क्यू शीट में शामिल करें। फोन के बगैर भी अच्छा लग रहा शो, वही पुराने कॉलर्स वही बातें होती हैं। हाँ बात आपकी ये किसी हद तक मैं मानता हूं, उस बात वही सलाम चार लोग, वही सलाम दुआ, वही। अच्छा मुझे लगता है वो चार जो लोग हैं वो सिर्फ वो जो है ना अपनी कॉल के चक्कर में फोन सुनते हैं या प्रोग्राम सुनते हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कब आया कब गया, प्रोग्राम में क्या चल रहा है, बस उनको अपनी आवाज अपने विचार और अपना ज्ञान वो आवाम तक पहुंचाना था, बस ये एक मकसद है। उम्मे रुबाब कह रही है अयाज मालूम आपसे लड़ाई नहीं होती तो मजा नहीं आता। अच्छा मजे आ रहे, ठीक हो गया। और हुमा जी आप क्या कह रही है, अच्छा वो कह रही है शो भी जो है 2007 के शोज जो है वो मेरे ख्याल से उनके पास रिकॉर्डिंग हुई। सीरियसली मैं तो चला जाता हूँ, सीधा साधा सा बंदा हूँ, शो करता हूँ घर चला जाता हूँ, रिकॉर्डिंग का मुझे कोई आइडिया नहीं कि कहाँ है किधर होती है क्या होता है, तो इसके लिए मैं माजरा चाहता हूँ। उनके शो एंजॉय करें आप, शो भी भाई के वो आपको मिल जाएंगे। अच्छा जी इसके अलावा जनाब हर प्रेजेंटर का ना अपना स्टाइल होता है, नदीम भाई का अपना स्टाइल है, मेरा अपना स्टाइल है, लेकिन चले। अच्छा जनाब अब जरा नेक्स्ट ट्रैक की जाने बढ़ते हैं। यार मैं क्या करूं, ये मुझे सिक्वेंसर जो है ना बड़े पसंद है, और इनके गाने जब रीडू हो रीमेक हो ये सारे मैं अपनी क्यू शीट में शामिल रखता हूं इनको।

जना वेलकम बैक सुन रहे हैं फिर 100 और क्या कहने जनाब। नादिया जी जो है वॉक कर रही हैं और कह रही है कि मैं वॉक करती हुई जा रही हूँ तो बारबेक्यू की खुशबू आ रही है। बस जो पाकिस्तानी आई खुशबू, पाकिस्तानी को सबसे ज्यादा खुशबू आ रही होगी। कहाँ घूम रही हो तुम यूके के जंगलात में? लेकिन मेरा गाना पसंद आ रहा है इनको, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। कहाँ से लाते हो सॉन्ग? ले आता हूँ मैं, कहीं ढूंढ ढूंढ के ले आता हूँ, टेंशन ना लो तुम। अली हसनैन भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओए होए होए होए, आयशा अदील आ गई है, कह रही लिसनिंग। अच्छा जी, चलो जी, बड़ी मेहरबानी है, आयशा अदील को वेलकम कहेंगे। अच्छा जी, ये संजीदा कह रही मुझे अच्छे लग रहे हैं भाई गाने। अच्छा जी, बेहतरीन वक्त गुजर रहा है मगर जल्दी जल्दी, ये अच्छी बात है, टाइम जो है ना जल्दी गुजरना चाहिए। जन्म आंखों आंखों में, आई लव दिस सॉन्ग, ऐसे सॉन्ग अच्छे लगते हैं। अरे क्या कहने भैया, क्या कहने इन गानों का। अच्छा, अब एक गाना मैं आपको सुनाता हूं, थोड़ा सा चेंज, लेकिन इसकी भी अपनी क्लास है और पता नहीं क्यों मुझे ये अच्छा लगने लग गया। तो जब भी मैंने आज क्यू शीट में रखा और मैं आपको सुनाता हूं, उम्मीद करता हूं आपको भी अच्छा लगे।

0: है, क्या बात है जनाब, मैं भी तू ते तू भी मैं, मतलब एक ही बात है, हुई ना गल। बहरहाल जनाब और आयशा अदील जनाब सुन रही हैं, और भाई आपको वो सलाम दुआ कह दी है, मिसेस फारूक ने वेलकम भी कह दिया है, और संजीदा जी को गाना जो है ना पसंद आ गया टिका के, मुझे आइडिया है अच्छी शायरी जो है ना वो पसंद कर जाते हैं। अच्छा जनाब, और फरहीन क्या कह रही है, सॉन्ग के लिरिक्स जबरदस्त थे, कमाल वाह, ये तो बात हकीकत, बाबा बुल्ले शाह का कलाम लग रहा है मुझे, वैसे जबरदस्त स्टाइल और गायकी तो एंड। दोस्तों एक मिनट की ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
2: This program is brought to you by
3: Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition और वो भी upgraded features।
4: क्या कम उम्र बच्चियों से मुशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र उनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की? उन पर काम का बोझ ना डाले, उनसे उनका बचपन ना छीने। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को ज़हनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। बच्चों से मुशक्कत लेना एक काबिले सजा जुर्म है, आइए बच्चों से मुशक्कत से इनकार करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
5: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
6: FM 100 like us on facebook.com/FM247365 FM247365
7: Active, yummy, adorable, zabardast. Say I've got a crush on you. Ye pyaas to suno yaar. Ye pyaas to suno yaar.
0: जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और बिलावल गिजरी से कह रहे हैं, सर टीम बांग्लादेश ने ना तारीख में पहली बार पाकिस्तानी टीम को क्लीन स्वीप किया। बस जी अब तो सारी चीजें क्लीन ही होंगी, और वैसे अफसोस हो रहा था, अभी मेरा तो क्रिकेट से सीरियसली बताऊं बिलावल भाई दिल ही उड़ गया, देखने को दिल ही नहीं कर रहा। अच्छा जनाब, और हुमा जी क्या कह रही भाई, कह रही है यस स्पिरिचुअल है और अल्लाह से कनेक्शन। हाँ बिल्कुल सही बात की आपने हुमा जी, लगता है आप भी बहुत गहरी शायरी जो है ना पसंद करती हैं। सच बताऊं शायरी अच्छी हो तो यार मजा भी आता सुनने का, बेहतरीन बात की आपने। अच्छा जी, और ये सब नाम आपके एहतराम में रखे हैं, आपके प्यार में हमारी जानिब से जाने जा और जानी और एक अदद जानिया, हाय हाय नहीं हा हा, खुश रहें सलाम अदा। एक बहुत स्वीट भाई, बहुत ही स्वीट मैसेज कर दिया है, खुश रहें भाई जहां भी रहें खुश रहें। अयाज भाई लव योर क्यू शीट। आमना, अच्छा जी आमना जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी HB सेलर फरीदा बुरहानुद्दीन भी आ गई हैं। तबीयत कैसी? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक, आप बताइए तबीयत आपकी कैसी है? कल आप नहीं आए तो दिल बड़ा उदास था, बस कभी आना जाना ये लगा रहता है, इसी का नाम जिंदगी। लेकिन यार उदास ना हुआ करें, इंजॉय किया करें आप। अच्छा जनाब, और शायरी वाकई अमेजिंग थी। अच्छा जी मिसेस फारूक क्या कहने, मिसेस फारूक भी बहुत शौकीन है अच्छे अच्छे गाने सुनने की। अच्छा भाई 90s का दौर मैं मुझे जरा बड़ा पसंद है, 80s का 90s का, तो मैं उनके गाने खास तौर पे रखता हूँ अपनी क्यू शीट में, और ये ट्रैक ये आपको ले जाएगा जरा 90s के दौर में।

जी वेलकम बैक, और सुन रहे हैं एफएम 100 और साथ साथ मैसेजेस बहुत प्यार मोहब्बत के साथ। अच्छा जनाब फजल खान आ गए हैं, सबको सलाम और सॉन्ग नाइस है। चले जी बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई, कैसे हैं आप? मेरा नाम मोहन लाल, अद्दा मोहन लाल चाला बाबा खुश हो। उमरकोट से मैसेज आ गया है और बड़ा तवील मैसेज कर दिया है। शिकवे शिकायतें भी है, नदीम के प्रोग्राम में उन्होंने इग्नोर कर दिया। चला चलो कोई नहीं यार, क्या हो गया, और वैसे भी कौन सी कोई कायदे आजम के तुमने 14 निकात लिख दिए, जो पढ़ना बहुत जरूरी था, पढ़ लिया, आधा पढ़ लिया बस। बहुत इतने तवील मैसेज करोगे कौन पढ़ेगा भैया? मोहन लाल अदम मोहन, छोटे मैसेज किया करो ताकि जल्दी जल्दी लोग पढ़े। इतनी पूरी तुमने चैप्टर लिख दिया, बताओ कौन पढ़ेगा भाई? ये सबसे बड़ी गलती यही है। तो नदीम भाई की मैं फेवर नहीं कर रहा, लेकिन मैं सच बात के साथ होता। अच्छा जनाब, आई लव योर मस्काबाजी उस्मान विदाउट मस्का। बेटा तेरी मुझे लग रहा दुकान है मस्के की। मस्का बन यार, मुझे याद है बचपन में वो भी मिलता था चाय के साथ सुबह सुबह कॉलेज जाते हुए। अरे अरे क्या याद दिला दिया आपने, मस्का कह के। अच्छा जनाब, अली हसनैन कह रहे हैं कि हुमा लिख दिया, हुमा अल्लाह से कनेक्शन के लिए स्पिरिचुअल के साथ फिजिकल कनेक्ट कम्युनिकेशन भी मस्ट होती है। अच्छा जनाब कोई बात नहीं, इतनी गहराइयों में मत जा अली हसनैन, पूरी डिटेल बताना शुरू हो गया। जना मैसेजेस करें, चाय स्पेस टेक्स्ट करेंगे और सेंड करेंगे 3636 पर। आए आए क्या ट्रैक था ये भी।

0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed.
1: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।

ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक, सुन रहे हैं एफएम 100 आयाज अहमद के साथ और साथ साथ मैसेजेस प्यार मोहब्बत के साथ। क्या बात है नादिया जी, यार डिजाइन अच्छा बनाया तुमने चेयर का, कोई क्रिएटिव है ये और इतनी अच्छी ये पेंटिंग भी करती हैं, इतने अच्छे ये जो है ना अपने घर की चीजें इतने अच्छे तरीके से डिकोर करती हैं, क्या कहने, कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स का सही इस्तेमाल हो रहा है। कीप इट अप, अपने भाई के लिए भी कुछ बना लो यार। चलिए बहरा सलीम मेमन कह रहे हैं सलाम अयाज, बता तो आज अच्छा हाल है बाबा, उर्दू इतनी मुश्किल से पढ़ी जा रही, तूने सिंधी लिख दी। सलीम मेमन बिल्कुल ठीक है, तमाम बुधायो। चले जनाब, और नादिया जी जो है ना मेरे गानों की सिलेक्शन जो है वो हमेशा वो कहती है कि यार अच्छा अच्छा, बड़ी मेहरबानी अगर आपको ऐसा लगता है, बहुत शुक्रिया आपका। और मिसेस फारूक, मुझे पता है ये गाने आपको जो है ना आपके फेवरेट ट्रैक्स होते हैं। अच्छा जनाब, एक बहुत ही जबरदस्त शायरी वाला गाना, कमाल शायरी भी अच्छी है, म्यूजिक भी अच्छा है, आप सबको डेडिकेट कर देता हूं, और वो है कैसे,

हुआ जनाब, वेलकम बैक सुनरे एफएम 100 और साथ ही साथ जाना था मैसेजेस के सिलसिले भी जारी। गाना पसंद आ गया जरीन नूर को बाबा, हाय हाय हाय कुछ बात है इस ट्रैक में भी जबरदस्त, जब भी प्ले करता हूँ बहुत ही अच्छा लगता है। और ये वैसे भी ये बैंड मेरा फेवरेट बैंड फिलविड मैक। बिलावल कह रहे हैं सर कुछ फास्ट ट्रैक प्ले करें। बेटा क्या कर रहे हो तुम, इतना फास्ट क्यों चल रहे हो, स्लो रहो थोड़ा, हालात जरा ऐसे नहीं है फास्ट के। अच्छा जनाब, और माजमीन को भी ट्रैक पसंद आ गया है, वाह वाह बड़ी मेहरबानी माजमीन, बहुत शुक्रिया। अरे उम्मे रुबाब क्या कहने, क्या कहने आप, बाकी ऐसा है सिर्फ बस ये हुमा जी का मैसेज मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ, ऐसा है नहीं यार, ऐसा नहीं है। और मैं तो कहता हूँ शुक्र है समझ नहीं आ रहा तो सही है। अच्छा जी इमरान भाई हमें सुन रहे हैं, कह रहे कॉल क्यों नहीं मिल रही है। इमरान भाई आज कॉल वाला सीन नहीं है, कॉल नहीं मिल रही, लाइनें बिल्कुल खराब हो चुकी हैं हमारी, हमारी क्या पूरे मुल्क की अजीब सी हो गई हैं। तो आजकल हम जरा कॉल्स के बगैर जो है वो शो करते हैं। इमरान भाई आप यहां मैसेज कर सकते हैं, क्या कहना चाह रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो, बिल्कुल फरमाए, इरशाद करें आप। और संजीदा जी को जो है ना पंजाबी अब समझ आने लगी यार, इतनी मुश्किल है भी नहीं वैसे, बहुत ईजी होते हैं। और पंजाबी में गाने जरा ज्यादा नए नए आते हैं तो इसलिए मैं जरा प्ले करता रहता हूं उनको। अच्छा भी पंजाबी सॉन्ग समझ नहीं आते, अब सुन सुन के शो में समझ आने लग गए हैं। मिसेस फारूक यही मैं कह रहा हूं, संजीदा जी को भी समझ में आ गए, आपको भी समझ आने लग गए, ये अच्छा हो गया ये काम। अली हसनैन भी कह रहे हैं तेरे वादे अगर वफा होते तुम मजाजे सही खुदा होते। अच्छा अली भाई आपकी बातें जाना, आप ही समझा, काफी गहरे शेर लिख लिख के भेज रहे हैं जो कि मैं पढ़ गलत रहा हूं, एक अलग अलग बात है। जी अगर मैं क्या बताऊं, इंग्लिश गाने भी काफी सारे रखता हूं लेकिन जरा माहौल देखता हूं तो फिर मैं उर्दू गाने ज्यादा लगा देता हूं। यार ये देखिए ये मेरा बड़ा फेवरेट गाना टफर देन द रेस्ट, कमाल ये ट्रैक है, थोड़े थोड़े सुना देता हूं।

भाई जनाब, और गयासुद्दीन बलबन जो है वो आ गए हैं मुल्तान से, कहना अस्सलाम वालेकुम आपको और पूरी टीम को और सुनने वालों को सलाम। आंधी तूफान मिट्टी का। अच्छा जी, मैं कह रहा हूँ मुंह आपने बाहर नहीं निकालना गयास भाई, ख्याल रखना है, डस्ट वस्ट का सबका ख्याल रखना है। और ये गाना आपके लिए खास तौर पर।

0: स्टेशन पर। मुनशियात को न कहीं जिंदगी को हाकें, आइए इस खतरे के खिलाफ मुत्तहिद। नशे से पाक नौजवान एक मजबूत मालियाती पाकिस्तान। एएनएफ का साथ दें, मुस्तकबिल बचाएं, कौम को मजबूत करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM247365
2: Active Yummy Adorable Zabardast
3: Ye pyaas to suno yaad
4: Ye pyaas to suno yaad
5: जनाब वेलकम बैक। और गयास भाई बहुत शुक्रिया प्लेलिस्ट पसंद करने का। गयासुद्दीन बलबन। और भाई जरा ख्याल रखना, आंधी तूफान आ रहे हैं और वो भी मिट्टी वाले, तो जरा डस्ट एलर्जी भी होती है बाज लोगों को, और आपने भी जरा अपना ख्याल रखना, ठीक है भैया। और नादिया जी, हर तरह का म्यूजिक आपको सुनने को मिल रहा है, रिमिक्स भी, स्लो भी, फास्ट भी। और अब मेरा दिल चाह रहा है कि जरा फिल्मी सॉन्ग भी पाकिस्तानी, शीट जो है ना फुल मिक्स स्टार्ट होनी चाहिए। और संजीदा जी को तो गाना पसंद आ गया फुल टाइम, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, बहुत शुक्रिया भाई आपका। अच्छा जनाब, एक फिल्मी गाना, और यार ये वैसे गाना नो डाउट बहुत ही आला है, पाकिस्तानी फिल्मी गाने भी कमाल है दोस्तों। जैसे चेक करें आप इसको,

जना वेलकम बैक अली हसनैन भाई, क्या कहने, आप सियासी मैसेज करते रहते हैं फुल टाइम, है ना। मैंने बात नोट करी है, काला डोरिया फास्ट सॉन्ग प्ले करे, मैं क्या बस करो इतनी फरमाइशा काला डोरिया, एंज नहीं करो, नाम नहीं लिखा आपने भाई, कौन है ये आदमी। यासुद्दीन बलबन शेरों के साथ आप अजीब क्या कर देते हो यार। फारूक बहुत शुक्रिया, इतना अप्रिशिएट करती हैं आप, इतना प्यार से खुलूस से मैसेज करती हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया। एक नए मोड़ पे क्यूट छा गए शहजादे, एक और यादगार, अरे बड़ी मेहरबानी संजीदा जी, बस आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बतें, बहुत शुक्रिया। और हुमा जी कह रही है एक नदीम के शो में और आपके शो में इंग्लिश ट्रैक सुनने को मिल जाते हैं। लेडी इन रेड, अरे क्या गाना याद दिला दिया आपने, जबरदस्त ट्रैक था वो। अच्छा भाई, शब्बन भाई सुन रहे हैं हमें, रजा भाई कैसे मिजाज हैं आपके, कह रहे थे यार रश के कमर वाला जो ट्रैक है ना वो जरा थोड़ा सा लो। फिर रजा भाई सिर्फ और सिर्फ

like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो NA सोने। स्लीपलेस नाइट में मैं हूं आपके साथ, आपका और मेरा साथ है जनाब 3 बजे तक। और 3 बजे तक आज सजाएंगे महफिल कुछ शेर शायरी की, कुछ सुनेंगे प्यारी प्यारी सी गजलें, कुछ मेलो से ट्रैक। और मोहब्बत की खुशबू और मौसीकी की नरमी के साथ, मेरी आवाज के साथ, इस पसंदीदा रात के साथ। शो को बढ़ाएंगे आगे जनाब। शो में शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका है, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो दिल को बहुत सुकून देती हैं और खुशफहमी ही समझे, उम्मीद है कि शायद मेरी आवाज भी आपके दिल को थोड़ा सा सुकून मुयस्सर कर सके, कोशिश करूंगा। और जो मैंने पहला जुमला कहा कि कुछ आवाजें दिल को सुकून देती हैं, ये तो खैर मैंने अपने साथ मुंसलिक कर लिया, मगर हकीकत है ये, जिंदगी में मौजूदगी के अलावा आवाज भी ऐसी होती है कि आवाज ही सुन ले, एहसास जो है वो भी दिल को सुकून देने लगता है, एक इत्मीनान सा महसूस करता है इंसान। रात की ये जो खामोशी होती है जिसमें आप शायद मुझे सुन रहे हो, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बड़े सुकून के साथ सुन रहे होंगे और मेरे शो के साथ साथ रात की खामोशी को भी महसूस कर रहे होंगे, और शायद कुछ बातों से दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती होंगी और कुछ कहती होंगी ठीक कह रहे हैं,

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको, और एक बार फिर बता दें जनाब मेरा नाम है नदीम अख्तर, जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया उनको बता रहा हूँ। प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सोने, स्लीपलेस नाइट में मैं हूं आपके साथ, आपका और मेरा साथ है जनाब 3 बजे तक, और ये 3 बजे तक महफिल सजी हुई है। इसमें अगर कोई शामिल होना चाह रहा है तो खामोशी से हो सकता है शामिल। ऐसे मैं एक बात जानता हूं कि बेतहाशा मेरे बहुत प्यारे प्यारे से लिसनर्स खामोशी से सुन रहे हैं आज। उसमें एक तो हमारी बहुत ही प्यारी सी लिसनर है, हमारी चाची की बहुत अच्छी दोस्त हैं, जिनका नाम है अजरा शब्बीर, वो भी सुन रही होंगी। अजरा जी अगर आप सुन रही हैं तो हमारी सब हम सब की जानिब से आपको अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्यारी सी बहन नसरीन पटेल है, मेरी प्यारी सी बहन अरूसा है, हलीमा पठान है, और उनके साथ साथ खामोशी से सुनने वाले जितने भी मेरे प्यारे प्यारे से लिसनर्स हैं सबको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, हमारे मिर्जा साहब, मिर्जा शुजात साहब को ये गजल नुमा गीत बहुत पसंद आया, और जिन्होंने फरमाइश की थी उनका कोई मैसेज नहीं आया। अच्छा जी, मोहब्बत की बातें ही हो रही हैं तो कुछ ऐसा भी है कि मोहब्बत में ऐसा भी होता है, खामोशी की मैंने बात की ना, खामोशी से बहुत से लोग सुन रहे हैं, तो खामोशी से ही मुझे एक बात याद आई जो मैंने पढ़ी थी कहीं, कि अगर कोई आपकी खामोशी को समझने लगे ना तो समझ जाए वो वाकई आपसे मोहब्बत करता है। मैसेजेस कर रहे हैं आपके एचआई स्पेस, आपका नाम, आपका मैसेज जिसको सेंड कर रहे हैं आप 3636 पर, और सलाम ब्यूटीफुल गजल कहा है और हंसते हुए कहा है और बिना नाम के मैसेज किया है, बहुत शुक्रिया। ये आपकी हंसी की वजह जो है ना वो समझ में नहीं आ रही, या तो इस गजल की वजह से आपको अपना इंतजार याद आ गया या कोई बात याद आ गई। खैर जी, जो भी हैं आप हंसते रहें या हंसती रहें, मुस्कुराते रहें या मुस्कुराती रहें। करम बलोच साहब कह रहे हैं सलाम नदीम भाई, हाउ आर यू जनाब, आई एम फाइन। कोशिश किया करें कि हर शो में इस्लामिक क्वेश्चंस को भी शामिल किया करें, आपकी नेकी लिखी जाएगी। करम भाई, इस हवाले से जो खुसूसी प्रोग्राम खुसूसी नशरियात होती हैं उसमें ऐसा ही होता है, और रमजान मुबारक में मैंने जितने भी प्रोग्राम्स करता हूँ पूरा मंथ उसमें इस्लामिक जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत सारे सवालात होते हैं, और इसी तरह जो हमारे बेहतरीन, वैसे तो सभी महीने सभी दिन बहुत अच्छे हैं, उसमें ये सिलसिला कार जारी रहता है। कादिर बख्श साहब, कादिर बख्श बलोच साहब, आपका मैसेज आया सर आंखों पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज करने का। कोशिश किया करें अपने मुतालिक ही बात करें। और अमीन भाई, आपका भी शुक्रिया, आपका भी मैसेज आया। असल में ऐसा होता है वैसे हमारे साथ कि हम अपनी जिंदगी से हटकर गिर्दो निवाह में जो भी वाकयात रुनुमा होते हैं, चाहे वो किसी के दिल में हो, किसी के घर में हो, किसी के मोहल्ले में हो, किसी के शहर में हो, या आपके मोबाइल में हो, उनकी तरफ तवज्जो बहुत होती है हमारी, तो तवज्जो सिर्फ अपने ऊपर देनी चाहिए। अगर हम सिर्फ अपने आप पर तवज्जो देना शुरू कर दें तो बहुत सारे हमारे मामलात बेहतर हो सकते हैं जिंदगी के। नौरीन बहना का मैसेज आ गया है और शुक्रिया। अरे मेरी बहन, मैंने ये नहीं कहा, मैं बस ये चाह रहा था कि पता चले कि कोई है साथ साथ। अच्छा जी, इसी बात पर हम एक और इंतखाब शामिल कर रहे हैं। एक और से मुराद ये है कि ये भी मुश्की की जानिब से है,
एक्टिव हैं आज। हाय पहला मिसरा, बड़े शायरों की बड़ी बातें। जो फिसला मेरे हाथ से वो पल नहीं मिला, एक ही मिसरे में कितना एहसास भरा हुआ है, वाह वाह वाह वाह। जो फिसला मेरे हाथ से वो पल नहीं मिला, मेरा गुजरा हुआ कल मुझे वापस नहीं मिला। लोगों से भरी दुनिया में ढूंढा बहुत मगर, फरिश्ते मिले मुझे बहुत लेकिन इंसान नहीं मिला। सोचा किसी के दिल में अब घर बना लूं मैं, लेकिन किसी का दिल मुझे साबित नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि मुझे मंजिल नहीं मिली, मंजिल मिली मगर कभी रास्ता नहीं मिला। बरसों से मैंने ढूंढा लेकिन मुझे इस शहर में कोई भी तेरे जैसा नहीं मिला। परवीन शाकिर, वाह। जो फैसला मेरे हाथ से वो पल नहीं मिला। हम अपनी जिंदगी में कितने ऐसे पल हैं जो अपने हाथों से, वो हमारे हाथों से फिसल जाते हैं। वो सिर्फ दिल की ही नहीं होते मामलात, हमारी जिंदगी के बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिस पर हम बाद में सिर्फ पछताते हैं कि काश उस वक्त मैंने वो अपॉर्चुनिटी जाया नहीं की होती, काश उस वक्त मैंने उसको हाँ कह

अपॉर्चुनिटी जाया नहीं की होती। काश उस वक्त मैंने उसको हाँ कह दी होती। काश वो पल जब वो पलट कर मेरे पास से गुजरा, उसके पलटने का मतलब यही था कि मैं कुछ कहूं, तो काश मैं कुछ कह देती या कह देता। हाय हाय, जो फिसला मेरे हाथ से वो पल नहीं मिला। मेरा गुजरा हुआ कल मुझे वापस नहीं मिला। बहुत खूब। मैसेजेस कीजिए कि चाय स्पेस, आपका नाम, आपका मैसेज, उसको सेंड कीजिए 3636 पर। अच्छा, इसी पर ना मुझे एक गजल याद आ गई है, ठीक है ना। जो फिसला मेरे हाथ से वो पल नहीं मिला, मेरा गुजरा हुआ कल मुझे वापस नहीं मिला। इस पर ये गजल बड़ी फिट बैठती है। तो बात दिल की हो और हल्की फुल्की मौसीकी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो लीजिए समाअत फरमाइए। और हमारी प्यारी सी एक लिसनर है गुड़िया अरूसा को ये गजल बड़ी पसंद है, उसको डेडिकेट करेंगे।

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको। अरे जनाब, आपकी मुस्कुराहट अगर साथ हो तो हर रात खूबसूरत लगती है। जो दिल में रहते हैं उन्हें आवाज देने के लिए हम हाजिर हैं जनाब। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, आपको उम्मीद करता हूं पसंद आई होगी। और हमारे मिर्जा साहब जो है गुज्जर खान से भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं शायरी को भी, और ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों को भी। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब। और इंतखाब आया है नौरीन की जानिब से, खुद अपने दिल में खराशें उतार, खुद अपने दिल में खराशें उतारना होंगी, अभी तो जाग के रातें गुजारना होंगी, तेरे लिए मुझे हंस हंस के बोलना होगा, मेरे लिए तुझे जुल्फें सवारना होंगी, अभी तो तेरी तबीयत को जीतने के लिए दिलो निगाह की शर्तें भी हारना होंगी, तेरे विसाल की ख्वाहिश के तेज रंगों से, तेरे विसाल की ख्वाहिशों के तेज रंगों से तेरे फिराक की सोहबतें निखारना होंगी, ये शायरी ये किताबें ये आयतें दिल की निशानियां ये सभी तुझ पे वारना होंगी। क्या बात है, क्या बात है मोहसिन नकवी साहब, वाह वाह नौरीन, बहुत खूब। और शहजादी कहती हैं, हमारी शहजादी फरहीन, अभी तो लफ्ज तराश रही हूं तखयल से, अभी तो लफ्ज तराश रही हूं तखयल से होशनास रही हूं, कभी धुन बनेगी दिल की, कभी धुन बनेगी दिल की, धड़कनों को लगा आस रही हूं। बहुत खूब, बहुत खूब भाई, मुश्किल था मगर समझने वाला। अलीमुद्दीन साहब ने शुक्रिया अदा किया है, बहुत शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है जनाब, हम हाजिर हैं आपके लिए। और जनाब, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, कुछ लोग जिंदगी में हवा की तरह आते हैं और फिर उड़ जाते हैं, मगर हमेशा याद रहते हैं, ऐसा क्यों है? हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शाद रहें, आबाद रहें, कोई ऐसी बात याद कीजिए जिससे आप मुस्कुराने लगे, वो बात जो आपको बहुत खूबसूरत लगती हो, चाहे वो लम्हे की सूरत में हो, घंटों की सूरत में हो, सेकंड्स की सूरत में हो, या ऐसा कीजिए मोबाइल को स्क्रॉल कीजिए और उस मैसेज को तलाश कीजिए जिसको देखकर ही, पढ़े बगैर, देखकर ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आसमान पर जब बादल होते हैं, चाहे छोटे छोटे से टुकड़ों की सूरत में हो, उनको देखकर ही दिल कितना खुश हो जाता है, और उन बादलों के साथ हवा भी हो और कोई साथ भी हो। हाय अल्लाह जी। अच्छा, अब एक गजल की जानिब जाना है, उससे पहले उसका मैं थोड़ा सा उसमें जो शायर ने महबूब की अक्कासी की है उसके हवाले से आपको बताता हूँ। नहीं नहीं, मोहब्बत होती है,
اور ہر ادا جو ہے اپنے محبوب کی انسان کو بڑی خوبصورت لگتی ہے، چاہے آنکھوں سے مسکرانا ہو، چاہے زلفیں بکھیرنا ہوں، چاہے اس کے رخسار کی بات ہو، چاہے اس کے جھمکوں کی بات ہو، چاہے کنگن کی بات ہو، تو کچھ ایسا ہی سلسلہ ہے کہ اور کچھ لوگ جو ہے وہ شاعر حضرات بھی خصوصی طور پر کہ محبوب کی ان اداؤں کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ویژلائز کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ان کو اپنا ہی محبوب نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جب ہم سنتے ہیں شاعروں کی اس شاعری کو تو ہمیں بھی ان کی شاعری میں کسی اور کا نہیں اپنا ہی محبوب نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو مشکی لیلا نے جو ہے وہ فرمائش کی تھی کہ جاوید اختر صاحب کی کوئی غزل ضرور شامل کیجیے، تو ان کی ایک غزل ہے، زلف مت کھولیے، اپنی زلفوں کو مت کھولیے اور منہ سے مت بولیے۔ آئے سماعت فرمائیے۔

वेलकम बैक कहेंगे, जुल्फ मत खोलिए, मुंह से मत बोलिए, ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप कि आप सबको भी पसंद आई होगी ये गजल। आज के शो में जाहिर है बज़्म गजल, बज़्म शायरी, और आज बहुत जबरदस्त प्यारे प्यारे से इंतखाब जो है वो भी मैं शो में शामिल करता रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। अच्छा जनाब, हमारे मिर्जा साहब को पसंद आया, वाह वाह क्या बात है, ग्रेट लेजेंड ऑफ जावेद अख्तर साहब, सदा बहार गानों कानों में रस खोलती आवाज, अल्लाह पाक सलामत रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। हम जब छोटे छोटे होते थे तो उस वक्त पीटीवी पर ये खूबसूरत आवाज सुनते थे जावेद साहब की, बिल्कुल ऐसा ही है जनाब, बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, थोनों पसंद आया। अच्छा जनाब, एक और इंतखाब आपकी समातों की नजर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। ये भी मुश्किल लैला की जानिब से है। बताओ कौन कहता है मोहब्बत बस कहानी है, मोहब्बत तो सहीफा है, मोहब्बत आसमानी है, मोहब्बत को खुदारा तुम कभी भी खेल मत समझो, मोहब्बत मोजज़ा है, मोजज़ों की तर्जुमानी है, मोहब्बत फूल की खुशबू, मोहब्बत रंग तितली का, मोहब्बत फूल की खुशबू, मोहब्बत रंग तितली का, मोहब्बत पर्वतों की झील का शफाफ पानी है, मोहब्बत एक इशारा है, मोहब्बत का अस्तारा है, मोहब्बत एक सितारा है, मोहब्बत फलक की बेकरानी है, जमी वालों बताओ किस तरह समझाएं मोहब्बत को, मोहब्बत तो जमी पर आसमानों की निशानी है, वाह, मोहब्बत तो जमी पर आसमानों की निशानी है, मोहब्बत रोशनी है, रंग है, खुशबू है, नगमा है, मोहब्बत उड़ता पंछी है, मोहब्बत बहता पानी है, मोहब्बत हक का कलमा है, मोहब्बत चाशनी मन की, मोहब्बत रूह का मरहम, दिलों की हुक्मरानी है, मोहब्बत तो अजल से है, मोहब्बत ता अबद होगी, मोहब्बत तो बेआफाकी जमानी ना मकानी है, फना हो जाएगी दुनिया, फना हो जाएंगे हम तुम, मोहब्बत बाकी रह जाएगी, ये तो जादुआनी है, मोहब्बत का अहाता और किन अल्फाज से होगा, मोहब्बत तो मोहब्बत है, मोहब्बत जिंदगानी है। शायरा है जनाब अमरीन खान, और एक इंतखाब शहजादी की जानिब से, बड़े अच्छे अच्छे इंतखाब आ रहे हैं भाई आज। फरहीन जीती रहो, कहती है कि जवानी बेखूब शबाब हो तुम, जवानी पे खूब शबाब हो तुम, कोई हसी महकता गुलाब हो तुम, पढ़ना चाहे हर कोई तुझको, खूबसूरत गजलों की किताब हो तुम, लबों पे लाली दहकते रुखसार, आंखों में रखती ताब हो तुम, तेरी नजर में जो निगाह देखी, ख्यालों में बसता ख्वाब हो तुम, मौसम बातें प्यारी प्यारी, मासूम बातें प्यारी प्यारी, दिल के सुकून का बाप हो तुम, अदा का हर रुख भी कमाल देखा, मिलने के नहीं नायाब हो तुम।

वेलकम बैक। हम तुम होंगे बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। शायर इनके फारूक साहब थे और इस हवाले से मैसेजेस भी आपके आना शुरू हो गए हैं। अपने दौर का फेवरेट सॉन्ग था ये, बिल्कुल सही फरमाया आपने, अपना नाम नहीं लिखा, बहुत दुख हुआ हमें। दिल की बातें हो रही हैं और दिल तक पहुंच रही हैं, तो आपने नाम नहीं लिखा, हमारे दिल को अच्छा नहीं लगा। खैर जो भी है, आप मुस्कुराते रहें। अरे जनाब, इस्लामाबाद से ठंडी ठंडी हवाएं तो नहीं, अब तो गरम गरम हरा हवाओं के झोंकों के साथ हमारे गुल तेरा रंग चुरा लाए गुलजारों से हमीद गुल साहब आ गए हैं। और क्या कहते हैं जनाब, आते ही कहा उन्होंने, तेरे सब नाज उठाऊंगा मैं, तेरे सब नाज उठाऊंगा मैं, तुम रब्बत से कोई बात तो कर, मेरे बारे में है अफवाहें बहुत, हाँ किसी रोज मुलाकात तो कर। क्या बात है गुल साहब। और कहते हैं कि हम तुम होंगे बादल होगा, मसूद मलिक साहब सिंगर और फारूक साहब की गजल है, बहुत सुनी है नदीम भाई। बेशक ये बहुत ही अपने दौर की पॉपुलर थी और कहीं गुम गई थी, तो मैंने बस फौरन से ये गजल निकाली और मैंने कहा सुनाऊं आप लोगों को। अच्छा, मैं कुछ नाम ले रहा था, सज्जाद अली का और जाफर साहब का और गुलशन आरा सैयद का, मुन्नी बेगम का, तो हमारे मिर्जा साहब ने, मिर्जा शुजा साहब ने कहा है कि सज्जाद अली अगर हो जाए। क्या बात है नदीम भाई, आपकी और आपकी प्लेलिस्ट की, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं कि कुछ आशार पेश किए उन्होंने और भाई, क्या करोगे अब मेरे पास आकर, खो दिया तुमने मुझे बार बार आजमा कर, बोला था तुम्हें मत जाओ यूं तन्हा छोड़कर, क्या मिला तुम्हें मेरा दिल दुखा कर, तुम तो कहते थे तुम बिना कोई नहीं, फिर क्यों मुझे छोड़ा छोटी छोटी उम्मीदें लगाकर। जिंदगी गुजर रही है, गुजर ही जाती है, लेकिन तुम कैसे खुश रह पाओगे मुझे रुलाकर। वाह वाह वाह वाह वाह, खूबसूरत शायरी खूबसूरत गजल, जानी की यादों में शामिल थी ये गजल, जाहिर है बहुत पुरान पीटीवी पर आती थी ये गजल। अच्छा आप जाग नहीं है, मैं तो समझा सो गई आप नौरीन। देखिए आपको हिला दिया ना हमने गजल से, उठ जाओ। अच्छा रात का पहर होता है, मेरे हल्ले गुल्ले के शो जो होते हैं उसमें सभी जो है ना वो फुल टाइम चार्ज होते हैं, और आज के शो में थोड़ा सा यू नो रिलैक्सिंग मूड होता है, मेलो से ट्रैक्स होते हैं, गजलें होती हैं, तो इस तरह तो होता है ना जी, इस तरह के कामों में मोहब्बत चीज ही ऐसी है जनाब, उसकी बातें भी ऐसी हैं, ये एक एहसास है, और एक ऐसा एहसास है कि जहां किसी की खुशी अपनी खुशी लगने लगती है। और कसम है नदीम भाई, अभी बाहर निकला हूं और देखा हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, हाय हाय देखें हम तो होंगे और बादल होगा। भाई गुज्जर खान में बारिश, वैसे पंजाब साइड पर बड़ी गर्मी पड़ रही थी। और बातें बहुत सारी हैं मेरे जहन में और आपसे करना भी चाह रहा हूं, मगर फिर वो फिर बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो इसी वजह से बात को वहीं रखा था, सज्जाद अली की हमारे मिर्जा साहब ने फरमाइश की है गुज्जर खान से, तो पंजाब में हुए हैं गुज्जर खान, तो एक बहुत खूबसूरत सा गीत है उनका और पंजाबी में ही है, और उम्मीद करता हूं कि ये उनको पसंद आएगा।

वेलकम बैक कहेंगे। तो जनाब मैं कह रहा था ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतने परेशान क्यों हो, उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखी गुजरे हुए सालों की तरफ, चूड़ियों पर भी कई तंज कसे जाएंगे, कांपते हाथों पे फिक्रे भी कसे जाएंगे, लोग जालिम हैं हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे, उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे, चाहे कुछ भी हो सवालात न करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात न करना उनसे, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अच्छा जी, नौरीन का मैसेज आया, कह रही हैं जाय साहब की गजल भी बहुत खूब थी, उमदा लाजवाब, बहुत शुक्रिया। और मैं जवाब रही हूँ जनाब, रहा साहिबा ने सबको जगाया हुआ है। चले अच्छी बात है। गुल साहब कहते हैं वाह वाह वाह, मुख्तसर सी नज़्म है उनकी, सपना आखिर सपना है, ये टूट गया तो क्या करोगे, वो रूठ गया तो क्या करोगे। माना कि तेरा अपना है सपना, आखिर सपना है, ये टूट गया तो क्या करोगे, वो रूठ गया तो क्या करोगे। अच्छा, ये गुल साहब ने अभी मुझे भेजा है, तो गुल साहब की एक और भी बहुत सारे खैर इनके आशार हैं कि दिल की कैफियत का मैं एक नाम हूं, समझिएगा जरा, दिल की कैफियत का मैं एक नाम हूं, इसीलिए तो हर जगह बदनाम हूं। मिर्जा साहब कहते हैं ओए होए होए होए, नदीम भाई क्या बात है आपकी, दिल को सुरूर विच कर देता तुसी, दिल चीर के रख देता है तुसी। मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए, दिल को एक जानिब से दूसरी जानिब ले गए, भाई हमारी यही तो अदा है। और हमारी शहजादी फरहीम जो हैं वो आज वो भी बहुत एक्टिव है माशाल्लाह से, और कहती हैं कि कुर्बत भी नहीं दिल से उतरा भी नहीं जाता, कुर्बत भी नहीं दिल से उतारा भी नहीं जाता, वो शख्स कोई फैसला कर भी नहीं, वजन नहीं आ रहा। कुर्बत भी नहीं दिल से उतर भी नहीं जाता, वो शख्स कोई फैसला कर भी नहीं जाता, दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है, और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता। खूब है, खूब है। कादिर बख्श कह रहे हूँ, कादिर बख्श हूँ, अच्छा जी फेवरेट सॉन्ग लगा दिया, अपने दौर का फेवरेट सॉन्ग जो मेरा ख्याल एक मैसेज था वो कादिर बख्श साहब का था। खैर जी, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। आज के शो को शायद सबने एंजॉय ना किया हो, लेकिन मैंने बस अपनी एक रॉ में एक आज का शो कर दिया। उम्मीद करता हूं कि
آپ محظوظ ہوئے ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ ہوئے ہوں، سو گئے ہوں، کھو گئے ہوں۔ نورین کہتی ہیں ہم تو ہر بات اب خدا پر چھوڑ دیتے ہیں، ٹوٹے نہ دل کسی کا اپنا ہی توڑ دیتے ہیں۔ واہ واہ واہ واہ، ہم تو ہر بات اب خدا پر چھوڑ دیتے ہیں، ٹوٹے نہ دل کسی کا اپنا ہی توڑ دیتے ہیں۔ ہم بھی انسان ہیں کوئی پتھر تو نہیں، ہم بھی انسان ہیں کوئی پتھر تو نہیں، پھر کیوں لوگ ہمیں یوں تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔

अच्छा जनाब, इसके साथ ही चंद अच्छा वक्त कम है तो आपको एक और गजल सुनाते हैं, फिर आपसे इजाजत चाहेंगे। पहले आपको सुनाया हमने तस्वीर बना के मैं तेरी, और अब भी जो चला रहा हूं ये मुझे बड़ी पसंद है। ये गीत है जाफर का और मोहब्बत का, इसमें जो इजहार है हाय हाय हाय, कमाल की शायरी है यार, सुनिएगा। ये जब भी मैं सुनता हूं खो सा जाता हूं। ये नहीं कि ये शायरी मुझ पर है, उन दिलों के बारे में सोचता हूं जो प्यार में मुब्तला हैं और प्यार को हार बैठे हैं।

इस सुनियो तेरे प्यार में ब्यूटीफुल ट्रैक एंड उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। गुल साहब कुछ कह रहे हैं, कहते हैं कि हम तुम होंगे और सेल्फी होगी, हाथों में दोनों की कुल्फी होगी। आजकल वैसे ऐसा ही है कुछ। अब बात बादल से आगे निकल गई है। बिल्कुल आपने सही फरमाया गुल साहब। और हमारी बहना नौरीन को की भी कैफियत वही है जो मेरी है। खैर जी, इसके साथ ही अब आपसे इजाजत चाहनी है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहा करें। मोहब्बत जो है वो खुशी का ही पैगाम देती है। अगर आपके दिल में मोहब्बत है, एहसास है, तो खुश रहा करें। इसके साथ ही मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, क्योंकि खुश रहेंगे और लोगों को खुश रखेंगे तो दिल को करार तो आएगा ही ना। तो करार के साथ ही इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।